0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुरुदेव।
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते।
0: बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव, वो आते ही होंगे।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। तो आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ सुनहरे पल, जिसे ज्ञान के पिंजरों से छुड़ा कर लाई हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई जानता है और करना भी पसंद करता है। लेकिन योग क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा विषय है संकल्पों के अनुशासन का नाम क्या है, योग। योग एक प्रकार से मन, वचन और कर्म का

के लिए आज्ञा दी जाए, उसी समय वह अनुशासनबद्ध होकर रुक जाता है। उसे जिधर मुड़ने के लिए कहा जाए वह एक सुंदर ढंग से उधर ही मुड़ता है। इसी प्रकार योगी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अपनी कर्म इंद्रियों के संबंध में भी अनुशासन का पालन करता है, जिनकी गणना यम नियमों के अंतर्गत होती है। और वह जब चाहे अपने मन को अपने कारखाने या मकान दुकान से हटाकर परमात्मा में एकाग्र कर सकता है, जिसे हम कहते हैं योग। और जब चाहे तब कार्य व्यापार में भी प्रवृत्त हो सकता है। वास्तव में आत्मा स्वयं एक अणु है, एक ज्योति कण है। इसका कर्म इंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है योग क्या है। योग संकल्पों के अनुशासन का एक नाम है योग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्मा जो है एक अणु की तरह है, एक ज्योति कण है। इसका कर्म इंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। योगी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, उसका मन विषयों के पीछे नहीं भागता, वह मित्ताहारी होता है और उसका व्यवहार दिव्य मर्यादा के अनुसार होता है। एक साधारण मनुष्य जो होता है, वो राह जाते हुए निष्प्रयोजन ही इधर उधर ताक झांक करता जाता है और वह एक विषय को छोड़ दूसरे विषय पर अनियंत्रित होकर बोलता रहता है। उसकी वृत्ति बिखरी रहती है और दृष्टि भटकती सी रहती है। भोगी मनुष्य सारा दिन खाता पीता, बोलता और पदार्थों को भोगता रहता है। गीता में इसे ही मन की चंचलता अथवा व्यविचार कहा गया है। इसके विपरीत योगी जो होता है, वो संयम रखता है, वो संयमी होता भी है। जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करते हुए उस पर उनका नियंत्रण होता है, इसी प्रकार एक योगी जो होता है, उसका जो है अपने मन पर नियंत्रण होता है और वो नियंत्रण रखता भी है। अपने मन को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को वो नियंत्रण करके चलता है। उसे ही कहते हैं राजयोगी। राजयोगी भी अपने जो होते हैं कर्म इंद्रियों को तथा अपने मन को ज्ञान के अनुसार, अपने मन को ज्ञान रूप अंकुश के अधीन रखता है, तो जिसे हम कहते हैं राजयोगी। तो आपने देखा राजयोगी किसे कहते हैं, ये एक अनोखी बात है जिसे हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको, उसके नियमों को पालन करने में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है योग। योग जो है संकल्पों के अनुशासन का नाम योग है। अब जरा सोचिए कि यदि ऊंट की नकेल न हो तो सवार की क्या गति होगी। इसी तरह यदि कोचवान घोड़े की लगाम अपने काबू में न रखे तो रण में वह कहां जाकर उतरेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को चाहिए कि वह भी अपनी कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों की बागे जो है ज्ञाननिष्ठ बुद्धि के वश में रखे। परंतु प्रश्न उठता है कि स्वयं बुद्धि की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। मन को काबू में कर सकने वाली बुद्धि है। बुद्धि यदि दिव्य हो और बलवती हो तो वह मन को कुपथ पर चलने से रोककर सुपथगामी बनाए रख सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि बुद्धि में दिव्य बल कैसे आए, उसका विवेक सद्विवेक कैसे बने, उसे पाप पुण्य की परख कैसे आए। इसी के लिए ही राजयोग रूप साधन है। जब हम बुद्धि को सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करते हैं तो उसकी शुद्धि होती है और उसमें वह दिव्य शक्ति आती है जिससे मन का अनुशासन सहज हो जाता है। उसकी विधि यही है कि हम परमपिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को उसकी सूक्ष्म स्मृति एवं अनुभूति में स्थित करें और मन को ऐसी बुद्धि का सहगामी बनाए। यही है राजयोग। तो राजयोग की विधि ऐसे है तो बहुत सहज। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी सेवा केंद्र में, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आप जाकर इस राजयोग की विधि को बहुत सहजतापूर्ण ढंग से सीख सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी में से धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी आपकी जीवन शैली बहुत सहज हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

प्लस 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कंपटीशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़ें और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम व्हेन वी गो टू वर्क, एंड नाउ डेज इन द ऑफिसेज इट इज सेड ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क। क्योंकि एक समय था जब कहा जाता है कि ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, सिर्फ यू नो कि यहाँ पर है इंटेलिजेंस, हम सारे आइडियाज देंगे, टॉप मैनेजमेंट सारे आइडियाज देंगे, जिसको हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते थे कि जो टॉप के लोग हैं आइडिया सिर्फ उन्हीं के होंगे और जो लोअर लेवल पर आएंगे उनको सिर्फ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे वे बैक, वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क। बट देन व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स and head to work. Earlier we were bringing only hand to work. It was very simple. एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते
0: गए। और उस वक्त की जरूरत भी शायद वही थी।
1: अब जब so many heads started coming to work, you know, क्योंकि हम एक horizontal structure पे आ गए कि सब लोग एक ही level पर हैं as far as giving the idea is concerned, तो जहाँ इतने सारे heads came to work, तो that means head अर्थात ego, इतने सारे egos came to work also, my idea is better than your idea, या आपका idea क्यों लिया गया, मेरा idea क्यों नहीं लिया गया, मेरा idea ज्यादा better है, तो जहाँ सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ego problem कम थी क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आईक्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई। और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो, हेड्स hands and heart to work. क्योंकि heart to work से क्या होगा, you're not just bringing your ideas, आपकी ego सिर्फ नहीं, लेकिन belongingness. Heart जहाँ है, अर्थात क्या कि belongingness है.
0: This is your office.
1: हम एक possible है ये कि हम अगर चाहें तो अपने office को अपना घर बना सकते हैं।
0: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा conflict ये भी कहा जाता है कि office के साथ emotionally attached नहीं हो जाना चाहिए, office को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए।
1: जहाँ तक attachment की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब detachment के concept पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में, बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस बट अटैचमेंट इज टू माय इमेज, अटैचमेंट इज टू माय आइडिया। आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है, आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजीशन से ना, अपने आइडिया से तो है। मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर, आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज। तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई। अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है, और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
0: नहीं है। और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो मुझसे ही रिलेटेड थे।
1: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट नहीं है ना, यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है, वैसे ये भी मेरा परिवार है। है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं, अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं, यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8, 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8, 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, तो वहां हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
0: वहां तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ, वहां इफ वी लुक एट एक्चुअली, तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है, अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए तो वहां हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
1: तो ये डर यहाँ है, ये डर हमें है, क्यों, क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता, व्हाट विल आई डू,
0: सारी जगह फैलाया जाए।
1: नाउ दैट इज द डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है। तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हरेक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो, ये सब किस लिए, बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वॉज माई फैमिली मेंबर, डिफरेंस। यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन ये गलती की, तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी, तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज व्हाटएवर, गलती की, हेल्प द पर्सन आउट एंड जस्ट कीप इट बिटवीन द टू पीपल, क्या होगा उस रिलेशनशिप में, दिस इज कोऑपरेशन, वो था कॉम्पिटिशन। अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहां तक जरूरत नहीं है रिपोर्ट नहीं की उसकी, और उसको सिखाकर समझाकर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया, what you have a family member for the rest of your life, not till you are only in that office, you have a friend for the rest of your life, But we don't want to build these relationships because we are in that belief system कि सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है. तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
0: दूसरे परिवार
1: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे. एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं. एंड मंडे मॉर्निंग
0: You will
1: look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho, us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
0: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा एटीट्यूड, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने ऑफिस में एंटर करेंगे.
1: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं. कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं, कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो हल्का कितना लगता है, क्योंकि आप
0: घर पे भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
1: बिल्कुल नहीं लगता. तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है, ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा. तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना, इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, नाउ माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमारो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बाय दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
0: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
1: इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
0: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
1: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड, एक ऑरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
0: मुझ तक नहीं पहुंच रहा,
1: आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए. मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ. अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते. तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी. ये सेकंड स्टेज थी. फर्स्ट स्टेज थी मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया. सेकंड स्टेज आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल. नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, लीकेज नहीं होने दो सारा दिन. थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
0: मेरी आप तक पहुंचेगी, ऑल ओवर पावर यू,
1: एब्सोल्युटली माय पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी. और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है. नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
0: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनली और आउटर, बोथ शुड बी सेम इन सिंक.
1: हाँ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर,
0: यू नो. हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चल रहा
1: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन्स जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड, फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो. एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं उसकी तो लेवल
0: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है. लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे. इफ आई चेंज
0: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली,
1: ओनली इंटरनली. क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए. वो कैसे निकलेगा, यू नो. उसका बीज नहीं है अंदर. अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए. तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली. लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा, तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत
0: के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा. वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो. ये माइंडसेट दिमाग में आते हैं कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा, यू नो, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी. अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी. तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं. यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता. घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती.
1: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना. देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में, गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता. अगले दिन वापस वही, उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल लेती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस. वाई? इट्स ओके. सी, कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर. लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है. लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है. और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है.
0: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव.
1: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना. तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है.
0: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माय रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माय रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माय बिलोंगिंग फीलिंग कि आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंडसेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
1: अगेन, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा काम अच्छा नहीं. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मैं भी, मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा. वाई कैन अ जूनियर नॉट थिंक द सेम थिंग अबाउट हिज सीनियर, कि मे बी ही इज अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या बात है जो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मैंने ये किया. क्या होगा उससे, इमिजिएटली आपके यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी. अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने किया ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
0: खुद डर गए हैं. सबसे बड़ी इनसिक्योर, खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ, तो हो सकता है आप ज्यादा.
1: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट, लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब्ड है, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबीयत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर है और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस, इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विथड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, व्हाट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है. और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर, आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या होना चाहिए.
0: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
1: पर अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी. आई हैव टू रियली रियली टेक केयर, सी दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवरपावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए, इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई.

0: वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है, तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा?
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ. सेल्फ मोटिवेशन, व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट? जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता. ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ. तो उसको गिव अप नहीं करें. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू, रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोच रहे थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए? लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी. जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज. अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट हमारा, एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा आपने सफर
1: था। किया आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस
0: मैं उसी
1: को
0: पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया क्योंकि मुझे मालूम था कि

0: थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है हमारा,
0: हाँ, एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओ दिस इज माय थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स की पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहाँ हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आया तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना।
0: ओके और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी
0: नॉट रियली।
1: हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आप जनरेटिंग,
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इंफॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाले हैं। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ, सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फला व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, यहाँ वहाँ गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहाँ वहाँ इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूँ ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही यू नो बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स। नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली अफेक्ट्स अस।
1: देखो पहले जो हम चीजें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल। पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे, तो इट वॉज साइंटिफिक ना कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन।
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट यू नो लाइक हम सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह,
1: अभी हम क्या करते हैं सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है, सो द फाउंडेशन ऑफ द डे इटसेल्फ इज ऑन अ डिफरेंट नोट। तो फिर उसके ऊपर एक्सपेक्ट करना कि पॉजिटिव थॉट्स जेनरेट हो, वी आर लुकिंग फॉर द इम्पॉसिबल, हमने वो अंदर इन्फॉर्मेशन भरी ही नहीं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम भरते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम्स,
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीव सिस्टम हैज टू बी वेरी राइट एक्चुअली.
1: वेरी राइट. एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सके
0: कि क्या
1: कि हम
0: गलत है.
1: ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की जरूरत है.
0: अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, यू नो टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन है,
1: टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है.
0: यस
1: टेंशन होनी ही चाहिए. यू नो टेंशन तो हर एक को है. यू नो अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग यू नो
0: क्या टेंशन नहीं है,
1: कि दैट इज अबनॉर्मल. तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है. तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है. आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को. तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है.
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम?
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना. आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है. आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है, बड़ी, वो बार बार बार बार उसको, और होनी ही चाहिए. तो इट्स कंसिडर लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन कि यू नो जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं. अगर आप टेंशन के बिना बैठे हैं अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज,
0: आपको कोई टेंशन नहीं है.
1: हाँ.
0: You know, like, of course.
1: So maybe you're good for nothing. Maybe you're not doing anything great in life. इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है.
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर
1: जो
0: पाओगे.
1: सबसे पहला रॉन्ग, मतलब रॉन्ग कहे या जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो है कि टेंशन नेचुरल है. किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है. टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है. टेंशन नॉर्मल है. नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है?
0: नो आई डोंट थिंक सो.
1: वी एक्सेप्ट इट एज द मोस्ट कॉमन थिंग.
0: नो बट इफ आई थिंक, नो वी एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स देयर,
1: राइट?
0: बट लाइक वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, बट इफ वी रियली थिंक अबाउट इट, अगर मैं आज बैठ के, आपने मुझे कहा पॉज दिया, मैंने सोचा कि इट शुड नॉट बी नेचुरल.
1: हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक एपिडेमिक नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज, या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है. इट इज अननेचुरल, और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देते. जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो, तो इमिजिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो, एंड द होल एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन.
0: बस छूट गई बच्चे की, एग्जाम है, क्या होगा, अब कैसे
1: एग्जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: यू नो, बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है, एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or...
0: तो ये tensions हैं.
1: हाँ. तो जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural. Natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है. You know, natural means what? जैसे चलना natural है. भागना
0: unnatural.
1: Natural is walking, yeah. तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे. तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड. एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग, दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है, और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी न किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में.
0: Definitely.
1: तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कंफर्टेबल. आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कंफर्टेबल. अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माय नेचुरल.
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना है. दिस इज
1: रॉन्ग, क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे. आप देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 पॉइंट समथिंग और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है, दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे, 100 जैसे ही क्रॉस हो गया आप क्रोसिन लेंगे। यू सी, यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल।
0: आई हैव दैट नॉलेज प्रोसेस, वी हैव एक्चुअली टेकन इट कि टेंशन नॉर्मल है।
1: अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए, आप क्रोसिन लेते हैं, क्यों, रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है क्योंकि कल you know I have to get back to work. अब टेंशन है बढ़ रही है, डे बाय डे इट्स गेटिंग, लेकिन हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे,
0: नहीं ले रहे
1: क्यों, क्योंकि हमने सोचा यही नेचुरल है। तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ये तो नेचुरल है।
0: अच्छा, उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट्स,
1: या तो टेंशन। अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया, एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, this is uncomfortable, this is causing pain, I don't want it, then I will start thinking na ki isko kaise finish karna hai or whatever, matlab main ilaaj ki taraf dhyan dena shuru karu tab jab pata chale ki bimari hai, lekin bimari ko hi normal samajh liya to ilaaj ke bare mein nahi sochenge, wo ek wrong belief hamari puri jeevan chinta mein beet sakti hai, kyunki humne swikar kiya ki ye bimari nahi hai, ye hi swasth sthiti hai।
0: और वही हमारी डेस्टिनी बनती है,
1: बिल्कुल,
0: पूरा जीवन, पूरा प्रोसेस की
1: पूरा जीवन हम चिंता में ही बीतेंगे।
0: अगर ये हमारा थॉट आ गया कि भाई यही थॉट ने फिर हमारा जो पूरी फीलिंग को जनरेट किया, पर्सनालिटी गए, एंड देन डेस्टिनी,
1: एंड हर स्टेप पे आप टेंशन क्रिएट कर लेंगे अपने आप से जल्दी से।
0: अच्छा, टेंशन से ही जुड़े हुए कई और मुद्दे हैं, टेंशन इज नॉर्मल ये हमने माना, दूसरा ये हम मानते हैं कि अगर हमें टेंशन है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हर परफॉर्मेंस से पहले टेंशन होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, स्टेज पे जाना है, थिएटर परफॉर्म करना है, गाना गाना है, यू शुड बी टेंस, बट आई इज इट अगेन,
1: क्योंकि मेजोरिटी पीपल टुडे फील कि अगर टेंशन नहीं होगी तो दैट इज आराम पसंद, यू नो, या कॉम्प्लेसेंसी, कि आप बिल्कुल लेड बैक हो जाएंगे, और अगर आप लेड बैक हो गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो दे वॉन्ट टेंशन टू क्रिएट दैट पुश
0: एनर्जी लेवल,
1: या उसको एड्रेनालिन ट्रिगर होता है ना अंदर आपके। इवन एक बच्चा अगर आराम से बैठा है और कल उसका एग्जाम है, तो उसको बोला जाएगा तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हें एग्जाम है ना। एज अ ग्रोन अप हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस रिलैक्सेशन के अंडर होगी। ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम के दिन वो टेंस्ड हो गया, तो वो सब किए कराई चीज भूल जाता है। हम केयरलेस मिस्टेक्स कराते थे स्कूल में, आई स्टिल रिमेम्बर, जी आता सब था,
0: लेकिन
1: एग्जाम के बाहर आने के बाद आपको लगता है ओहो ये गलत लिख दिया, आता सब था, एंड देन वी यूज्ड टू गिव इट द टर्म केयरलेस मिस्टेक। व्हाट इज केयरलेस मिस्टेक? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एफिशिएंसी लेवल वाज डाउन, सब कुछ आते हुए गलत लिखा हाथ ने, कंसंट्रेशन लेवल वाज डाउन, क्योंकि टेंशन है,
0: एंग्जायटी।
1: तो एंग्जायटी परफॉर्मेंस को बढ़ा कैसे सकती है, इनहांस कैसे कर सकती है, वो तो हमेशा परफॉर्मेंस को डाउन ही लेकर जाएगी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस, आप जॉब करते हैं, आपको टेंशन है छोटी छोटी बातों की, वेदर इज रिलेशनशिप्स, वेदर इज वर्क, तो जैसे ही टेंशन होती है माइंड की स्थिति कैसे हो जाती है, क्या फील करते हैं,
0: व्हाट डू यू फील, इट्स वेरी यू नो लाइक आप एनर्जी लेवल आपका लो हो जाता है, यू कांट परफॉर्म,
1: राइट, आपकी एकाग्रता शक्ति, कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, निर्णय लेने की शक्ति,
0: डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, यस,
1: मेमोरी पावर,
0: फोकस
1: लूज हो जाएगा, मेमोरी पावर,
0: यस,
1: आप यू विल टेंड टू गेट लिटिल इरिटेटेड मोर ऑफन, तो उससे आपकी रिलेशनशिप्स, नब ये सब फैक्टर्स प्ले करते हुए अगर कोई कहे कि माय परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव व्हेन माय कंसंट्रेशन विल रिड्यूस,
0: हाउ विल
1: माय परफॉर्मेंस इम्प्रूव,
0: एंड फाइनली टेंशन समवेयर हमें हेल्थ की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है उसको परेशान कर सकते हैं।
1: तो इतने आज जितने जैसे अगर आप स्टडी देखें कि इतनी एब्सेंटिज्म जो हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इतनी बीमारियों की वजह से हो रही है, इट्स मोर बिकॉज द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मानसिक जो दर्द है, मानसिक जो बीमारी है, उसकी वजह से वो शरीर के ऊपर असर ले रही है। तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है? मुझे ब्लड प्रेशर आज हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो सकती है? एंड यही अगर हम रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन वो क्यों एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना, प्रेशर और टेंशन ये दो चीजों को हमने मिक्स कर दिया। प्रेशर चाहिए, टारगेट चाहिए,
0: पुश करने के,
1: यू नो, इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर या इवन फॉर अ स्टूडेंट हमें टारगेट चाहिए। जैसे एग्जाम है, ये एक टारगेट है। एग्जाम होता है तभी बच्चे पढ़ते हैं मेजोरिटी। अगर एग्जाम नहीं होता तो शायद हम उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। लेकिन एग्जाम देने के लिए मुझे टेंशन चाहिए, दिस इज अननेसेसरी। सिमिलरली एक ऑफिस में एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, आपको इस इतनी सेल्स अचीव करनी है या व्हाटएवर करना है। लेकिन वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप रिलैक्स्ड होकर उसको अचीव करें या टेंस्ड रहकर उसको अचीव करें, ये हमारी चॉइस।
0: एक्चुअली एक और चीज ये कही जाती है कि टेंस रहेंगे तो आप माहौल भी टेंस क्रिएट कीजिए, एंड एवरीबॉडी विल बी टेंस एंड देन परफॉर्म करेंगे। बट आई थिंक समवेयर ओवरऑल जो पूरा
1: ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे चेंज होते हैं, वी विल हैव टू ट्राई इट आउट। हमने दूसरा वाला शायद बहुत टाइम से देखा ही नहीं, आराम से काम होता कैसे है, और अभी का बिलीफ सिस्टम ये होगा आराम से काम नहीं होगा जी,
0: शोर मचाना,
1: अगर शोर नहीं मचाएंगे जी कोई सुनेगा नहीं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम सारे, वी हैव टू वर्क इट आउट एंड चेक इट, बिकॉज विद द दीज बिलीफ सिस्टम्स वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई द अदर वन, फिर देखे अगर वो वाला नहीं ठीक लगा, गो बैक टू द ओल्ड वन, लेकिन इट विल वर्क।
0: एंड इन फैक्ट ऑफ कोर्स इट शुड वर्क बिकॉज़ इट हैज लॉजिक,
1: एब्सोल्युटली।
0: अगर हम उसको लॉजिकल, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम सोचने लग जाएं, जो हमारी मान्यताएं बन चुकी हैं, उनमें अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा बैठ के अगर सोचते भी है एक लम्हे को रुक के, सो वी रियलाइज देयर इज लॉजिक, यू नो, इफ वी लुक एट द अदर। अनदर थिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद टेंशन इज लाइक, अगर टेंशन है काम पे है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, या किसी सिचुएशन में है, वहां से भाग जाएंगे, यू नो, लाइक मूविंग अवे, मैं एक ब्रेक ले लूंगी, मैं वेकेशन पे चले गई, या मैंने उस चीज ही छोड़ दी, काम
1: या मैं उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दूं,
0: मतलब मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूं, यू नो, कि लाइक ओहो प्लीज देयर इज टू मच ऑफ टेंशन,
1: इनसे नहीं मिलना, इनके पास नहीं जाना,
0: बहुत ज्यादा।
1: कई बार लोग अपनी जॉब चेंज कर देते हैं,
0: yes,
1: कि इस जॉब में बहुत टेंशन है।
0: नो, बट देन इज इट एस्केपिज्म रियली?
1: इट इज, बिकॉज उसके पहले एक और बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये बिलीफ जनरेट हो रहा है, और वो बिलीफ ये है कि दूसरे लोग मेरी टेंशन का कारण है, तभी तो मैं उन लोगों से किनारा करूंगी ना। अगर मुझे लगे आप मेरी टेंशन का कारण है, तो बार बार आपसे मिलूं मैं टेंस्ड हूँ, इससे अच्छा मैं आपसे मिलना बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने समझा आप मेरी टेंशन का कारण है। आप अभी आधे मिनट के लिए ट्राई कीजिए कि वर्तमान समय, एवरीवन कैन ट्राई आई थिंक, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्तमान समय मेरे जीवन में तनाव के कौन कौन से कारण हैं, और छोटे से लेके बड़े तक, द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड। जो हम रीजन निकालेंगे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, सास बहू, पति, बच्चे, बॉस, व्हाटएवर, फाइनेंशियल क्राइसिस, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी, बट द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया, एंड ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सबसे बड़ा, कि माय स्टेट ऑफ माइंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल एंड अदर सिचुएशंस,
0: इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम।
1: टोटली, मैं बिल्कुल ठीक थी, आपसे मिली, मुझे गुस्सा आ गया, मैं बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, आपने गलत कर दिया, मेरा मूड ऑफ
0: हो गया। मैं तो ठीक ठाक थी, उसने कह दिया मुझे, तो मेरा, मुझे इरिटेशन हो गया।
1: आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आप मुझे अपसेट करते हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन, यू आर द कॉज ऑफ माई सफरिंग।
0: बट हाउ टू रिमेन अनअफेक्टेड? एक्चुअली
1: इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ अफेक्टेड, इट इज फर्स्ट द क्वेश्चन, इज द अदर पर्सन द सोर्स? आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इवैल्यूएट एनी सीन बिफोर योरसेल्फ, क्या दूसरा व्यक्ति सोर्स है? व्हाट आई, व्हेन वी वर्क ऑन दिस, व्हाट वी अंडरस्टूड वाज, दूसरे ने जो कहना था उसने वो कह दिया, जो करना था उसने वो कर दिया, उसकी बात को लेकर नाउ व्हाट आई डू विद इट,
0: हाउ डू आई हैंडल इट,
1: इज गोइंग टू क्रिएट माय पेन और प्लेजर और हैप्पीनेस और सैडनेस, व्हाटएवर, एवरीथिंग, माय थॉट। इट इज नॉट व्हाट यू से टू मी, but it is what I do with what you say to me. You see, you will say and walk off, you finished your part. Ab main us baat ko lungi aur us baat ko किस तरह से परसीव करूंगी, किस तरह से समझूंगी और उसको किस तरह से एनालाइज करके उसको बार बार रिपीट करते रहूंगे अंदर, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, एंड देन आई जनरेट माई फीलिंग आउट ऑफ इट. तो इट्स नॉट वॉट यू सेड, यू सेड एंड यू वेंट अवे. आप साइंस में भी देखेंगे तो टेंशन का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस का, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो प्रेशर बाहर से आएगा, यस इट प्लेज अ लिटिल रोल क्योंकि वो स्टिमुलस है, डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो हमें यही सिखाया जाता था तब कि अलग अलग मेटल्स हैं, एक शीट है मेटल के और हर मेटल की शीट पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग निकलता था. क्यों? प्रेशर तो सेम था क्योंकि डिनोमिनेटर प्ले कर रहा है. तो डिनोमिनेटर था रेजिलियंस, उस मेटल की उस

0: इसको फेस करने की पावर
1: इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था.
0: इनफैक्ट तो प्रेशर कॉन्स्टेंट था लेकिन रेसिलियंस डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर डिफरेंट निकला. एंड सेम इज एप्लीकेबल टू अस. एक ऑफिस में भी आप देख लीजिए, एक ही बॉस है, 10 जूनियर्स है, एक ही बॉस एक ही तरह से सबको डांटता है लेकिन सबका रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. अगर बॉस कारण है उनकी टेंशन का तो हर एक को इक्वल लेवल ऑफ टेंशन होनी चाहिए ना. बॉस तो एक ही था, आप सबने गलती भी एक ही कर दी, वो आए आप सबको डांट के चले गए लेकिन आप सबने जो रिस्पॉन्ड किया
1: जो रिएक्ट किया
0: वो डिफरेंट था. एंड अगर 10 लोग होंगे तो 10 अलग अलग रिस्पॉन्स निकलेंगे क्योंकि द रिस्पॉन्स इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टिमुलस. जो बॉस आया बाहर से ही वॉज द स्टिमुलस एंड हमने जो रिस्पॉन्ड किया दैट्स द रिस्पॉन्स. लेकिन वो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स उसके बीच में है फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स.
1: सो ओके व्हाट वी गैदर एक्चुअली शिवानी विद आज की जो बातचीत है उससे ये कि हमने आज एक बार फिर उस बात को जानने की कोशिश की कि हमारे थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस से गुजर के हमारी डेस्टिनी गवर्न कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी लिखते हैं. दिस इज समथिंग अमेजिंग बट देन दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली सीन यू नो कि एक थॉट जो और अब मुद्दे की बात यह आती है कि थॉट जो जनरेट कर रहे हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स कर रहे हैं. जितने भी हम बिलीफ सिस्टम्स में जी रहे हैं अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं हम उन्हें ही सही मानकर चल रहे हैं तो हमारे थॉट्स भी वही हो रहे हैं. अब एक और बात जो है कि थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं उसमें आपने कुछ तीन बातें बताई हमें.
0: पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम. जो भी हम अंदर इन्फॉर्मेशन समाचार इधर उधर से भरते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव है किसी के साथ, ये तीनों चीजें हमारे संकल्प की क्वालिटी को
1: और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम को जाता है.
0: सही
1: बिलीफ सिस्टम. और आज जो मुद्दा था वो टेंशन थी यू नो कि कहीं ना कहीं बहुत सी गलत मान्यताओं को लेके हम टेंशन के साथ जी रहे हैं. सबसे बड़ी गलत मान्यता जो नजर आई वो ये थी कि टेंशन नॉर्मल है.
0: राइट बिल्कुल
1: सहज है तो वो नहीं है सहज. हमें ये जानना है कि अगर हमें टेंशन हो रही है तो वो सहज नहीं है, वो असहज है, एबनॉर्मल है, उसे चेंज करना
0: है
1: और उसे चेंज करना जरूरी है. एंड अनदर थिंग विच वी अंडरस्टूड टूडे इज लाइक कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे इस सिचुएशन के लिए या हमारी टेंशन क्रिएट करने के लिए. हम ही कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशन को वो टेंशन क्रिएट करता है. तो चलिए ये बात क्योंकि अब वक्त कम है यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी लेकिन इससे जुड़े बाकी मुद्दों को भी अगली कड़ी में हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: ओम शांति. और इसके साथ आपको भी बता दें कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आप ही का प्रोग्राम है. अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा जज्बा है जो कुल बुला रहा है, जो कहना चाहते हैं आप कुछ, तो आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर टेंशन अपने जिंदगी में हम नहीं रखेंगे और अगली कड़ी में इसी से जुड़े कुछ और खास मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे. और जो कुछ हम इस पूरी जो पूरा प्रोग्राम है उसमें जान रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं. और अगली कड़ी में शिवानी जी हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो ईमेल्स आए हैं उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करें. तो आप दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम
3: दोस्तों जीवन में जा रहे हैं। हर कोई जीवन को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई परिभाषा खुद बनाता है। किसी के लिए श्रम ही सफलता का साधन है, तो किसी के लिए दोस्ती, संबंध, मैत्री ये सफलता का माध्यम है। किसी के लिए जीवन सफल तब होता है जब वो किसी एक मुकाम तक पहुंचते हैं, और किसी के लिए जीवन तब सफल होता है जब उन्हें इत्मीनान और सुकून मिलता है। हर एक के लिए जीवन की परिभाषा अलग है, लेकिन आज हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, उनके लिए जीवन की परिभाषा ये है, निस्वार्थ परिश्रम। 107.8 रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के जो अतिथि हैं, उनके जीवन का ध्येय या कहे महामंत्र यही है कि परिश्रम, निस्वार्थ परिश्रम, यही परमात्मा के लिए श्रेष्ठ पूजा या साधना है। आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, और मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक और मेहमान को लेकर के आया हूं। हमारे बीच में है श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी, राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव अजीतगढ़ से एक बहुत चमकता हुआ हीरा। जगदीश प्रसाद पारिक जी भारत सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। वो एक जैविक कृषि करने वाले जैविक किसान हैं, जिन्होंने जैविक कृषि को पूरे देश भर में फैलाया है। उन्होंने कईयों तक जैविक कृषि का ज्ञान मुफ्त पहुंचाया है। आइए स्वागत करते हैं जगदीश प्रसाद जी का। जगदीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
3: साथियों, इससे पहले कि हम जगदीश जी से हमारी बातचीत शुरू करें, मैं जगदीश जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जगदीश जी हमारे बहुत नजदीक के कहेंगे पड़ोसी हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन है आबू रोड में, माउंट आबू में, और जगदीश जी कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे राजस्थान के सीकर से हैं। जगदीश जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, और क्यों? एक विशेष प्रकार का फूल उगाने के लिए। आप सोचते होंगे कौन सा फूल ऐसा उगाया जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये एक ऐसा फूल है जो केवल दिखने में ही खूबसूरत नहीं, लेकिन खाने में भी बड़ा ही लजीज होता है। मैं बात कर रहा हूं फूल गोभी की। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी, लगभग 12 से 13 किलो का एक फूल गोभी इन्होंने अपनी नवीनता से, अपने उन्नत प्रयासों से उगा करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया, और तब से लेकर के आज तक भी जगदीश जी का नाम जब भी कोई फूलगोभी खाता है, और भारत की ये विशेष फूलगोभियों को खाता है, तो उन्हें जगदीश जी का नाम जरूर याद आता है। जगदीश जी, फूलगोभी जिस प्रकार से हम सबके जीवन में, हम सबके थाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं समझता हूँ आपके प्रयासों की वजह से वो अब ना केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकिन एक यादगार हिस्सा भी बन जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम आपसे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आज आप हमारे बीच में आए हैं। तो जगदीश जी, हम शुरू करना चाहेंगे आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था, और किस तरीके से धीरे धीरे आपका रुख जो है वो खेती की तरफ बढ़ता गया, और किसानी करते करते किस प्रकार से आप उन्नत किसानी की ओर बढ़ गए, और न केवल प्रयास लेकिन एक सफल प्रयास करके आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, केवल उस कहानी के जरिए हम आपको जानना चाहेंगे।
4: जी, मैं राजस्थान के सीकर जिले में एक कस्बा है अजीतगढ़, अजीतगढ़ का रहने वाला हूँ। जाति से पारिक ब्राह्मण हूँ। मेरा बुजुर्गों का पुश्तैनी काम था खेती करने का, तो मेरे मामा जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, दोनों मामा जी थे, दोनों के नहीं थी, तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। और पिताजी के भी मैं एक ही था, तो मैं मामा जी के साथ रहता था। बचपन में जब 8 साल का मैं था हुआ जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जब स्कूल में दाखिला लिया उस वक्त से ही मैं शुरू से तो जाता ही था बचपन में, तो उनके साथ खेती क्यारी में काम करने के लिए देखने के लिए, लेकिन स्कूल में दाखिला लिया जब से सुबह मैं सब्जी बेचता और शाम को सब्जी तैयार करता, और उस वक्त बहुत सस्ती रेट थी, तो 50 पैसे 60 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मैं रोज सब्जी बेचता। जब रविवार होता तो मुझे 1 रुपए की सब्जी। तो ऐसे करते करते मैंने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली, और मैट्रिक के बाद में मैं ONGC में सर्विस करने के लिए आसाम शिव सागर चला गया। वहां पर मैंने करीब 8 महीने तक सर्विस की, और जब मैंने वहां लगाया तो यहाँ एक अध्यापक को 89 रुपए सैलरी मिलती थी और मुझे 296 रुपए 15 रुपए मकान किराया, 283 के करीब सैलरी। तो मैंने लगाया कि मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ 10 रुपए रोज के नहीं कमा रहा हूँ, जबकि मैं घर में 20 रुपए की सब्जी बेच देता। तो मैं नौकरी छोड़ करके वापस आ गया और आ करके मैंने खेती करना शुरू कर। उसके बाद मैं खेती करता रहा। 2017 में कुएं में पंपिंग सेट लगा लिया और खेती कर रहा हूँ। तो खेती करते करते फिर क्या हुआ कि मेरी इच्छा ये हुई कि मेरे साथ वाले सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सब अच्छे वो है, लेकिन मेरी शिक्षा अधूरी थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब प्राइवेट पढ़ाई खेती के साथ करता था। अब वो करने के बाद क्या होता है कि जब लास्ट टाइम आया फाइनल में BA का, मैं एग्जाम दे रहा था और एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर रह गया। उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, वो रही गया मेरा। उसके बाद मैं सब तरह की सब्जियां तैयार करता था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब भारत सरकार हर खिलाड़ी को, हर चीज को, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले को इतना महत्व दे रही है, तो क्यों नहीं मैं भी सब्जियों में विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। तो जैविक तो मैं करता आ रहा था क्योंकि सन 1964 में रसायन युग आ गया, लेकिन मैंने किसी तरह के रसायन को मेरी जमीन में नहीं घुसने दिया और मैं विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। तो विश्व रिकॉर्ड में मैंने लौकी जो मैं रोज बोता था, हर साल बोता था सीजन में, हर तीन सीजन में तुरई, लंबा बैंगन, पहले बैंगन जो थे गोल नहीं लंबे ज्यादा चल रहे थे, लंबे बैंगन, गोल बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चल रहा था। तो मैंने ऑर्गेनिक तरीके से इनका बीज बढ़ाना शुरू किया, समय पर खाद, समय पर पानी, निराई गुड़ाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जो अपन खाद तैयार करते हैं वो हम लोग बाहर डाला करते थे, तो उसका जो नाइट्रोजन है उसमें विशेष जो 16 में 13 महत्वपूर्ण तत्व थे वो तो सूरज की रोशनी से उठ जाते, वो मिट्टी बरोबर रहती। तो फिर मैंने क्या किया, गड्ढे बना करके कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि तरह के कंपोस्ट बनाए और आवश्यकता अनुसार जमीन में डाले। उससे मेरे यहाँ क्या हुआ, पैंचों की संख्या ज्यादा हो गई और आज भी मेरे हर 1 इंच में एक केंचुआ है। तो मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, अगर बरसात हो जाती है तो मैं मेरी फसल में जा नहीं सकता, इतने केंचुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से हो जाते हैं, जमीन में केंचुओं की संख्या भारी हो जाती है तो मैं जा नहीं सकता, ये स्थिति है। फिर उन केंचुओं की मदद से मैंने गोबर में उनको प्रवेश करवा करके गोबर की खाद को फर्टिलाइज करवाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया, वर्मी कंपोस्ट आवश्यकता अनुसार देता रहा। इस तरह क्या हुआ कि शुरू में जब मेरी गोभी का वजन मैं शुरू में लेके आया उस वक्त था केवल 1.25 किलो, आधा किलो, धीरे धीरे वो 2 किलो 2.5 किलो होता गया, और जो जो वजन बढ़ता गया मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। और उसके साथ मैंने क्या किया, 1982 में पहला गोभी का फूल 9 किलो का भेंट किया, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़, जो बाद में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनको भेंट किया। और उनको भेंट करने के बाद जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई तो मैं आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सब चीजों को आगे ले गया। आगे ले जाने पर क्या होता है कि 12 किलो का गोभी का फूल मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भेंट किया, और सब सब्जियां 7 चीजें से 6 फीट लंबी मैंने किया तैयार की, लौकी 7 फीट लंबी तुरई तैयार की, 1 मीटर का 2 इंची लंबा मोटा गोल बैंगन तैयार, बहुत लंबा बैंगन तैयार किया, 3.5 से 5 किलो तक का गोल बैंगन तैयार किया, और 12 किलो तक की पत्ता गोभी तैयार की, 86 किलो का कद्दू कोड़ा जो एक आदमी से उठ के चल नहीं सकता है वो तैयार किया, सब ऑर्गेनिक तैयार, क्वालिटी और क्वांटिटी में श्रेष्ठ रखा उनको। इसके बाद क्या होता है मैं सबको साथ लेकर के और आगे उस रिकॉर्ड में पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने सबको इसी जगह पर छोड़ दिया, केवल फूल गोभी के पीछे रह। जब फूल गोभी का मैंने रिकॉर्ड देखा तो वो था 26 किलो, तो मैं 26 किलो वजन से ऊपर लाने की कोशिश में लग गया, और चलते चलते ये सा समय आया कि मैं 25 किलो 150 ग्राम तक पहुंच गया, और वो 25 किलो 150 ग्राम का विश्व रिकॉर्ड में मैंने बनाया, जो मैं विश्व में दूसरे नंबर पर चल रहा हूँ। वैसे होना चाहिए मुझे होना चाहिए 1 नंबर पर, लेकिन 2 नंबर पर इसलिए चल रहा हूँ कि मेरी गोभी में और अमेरिका की गोभी में 850 ग्राम वजन मेरा कम है, इसलिए तो मैं हूँ 2 नंबर पर। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका वाले रसायन करते हैं, मैं जीवित कर रहा हूँ, उनके यहाँ संसाधन है मेरे यहाँ संसाधन नहीं, उनके यहाँ पानी की बहुत आयात है मेरे यहाँ पीने के लिए पानी टैंकरों से आता है रिचार्ज करके पानी इकट्ठा। तीसरी बात, वहां सरकारी सहायता मिलती है, यहाँ सरकार कुछ नहीं देखता है, ये जितना तो है जो है ही, लेकिन फिर भी मैं ये लग रहा हूँ कि अगर मेरा विश्व रिकॉर्ड बनता है तो मैं मात्र मेरी एक इच्छा है, मुझे न किसी से कोई पैसा लेना न कुछ लेना न कोई मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना ये है कि विश्व रिकॉर्ड में मेरे देश का नाम पहले नंबर पर आए, भारत का नाम पहले नंबर पर आए, इसलिए मैं इस कोशिश में लग रहा हूँ, केवल 850 ग्राम से पिछड़ रहा हूँ, और बाकी गोभी की खेती आज भी तैयार। फिर जब मुझे ये इसमें चैन नहीं पड़ा तो मैंने देखा कि हर किसान के साथ बीज वाले धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उसको निजात दिलाने के लिए मैंने स्वयं गोभी का बीज तैयार किया, और जो भी देश की वैरायटी होती है उसमें तीनों का ग्रास रूट टेक्नोलॉजी से बीज, 3 तरह के बीज, साठ का, श्रावण का और भादो, मतलब जून से लेकर के सितंबर तक का जो गोभी तैयार होती है देशी वैरायटी, सबके जीन इकट्ठे करके एक जीन तैयार किया, और वो जीन जो तैयार किया उसमें ये होता है कि आपको बार बार बीज नहीं लेना पड़ेगा, एक बार आप बीज लेकर के जून से सितंबर अक्टूबर तक एक ही बीज को बो सकते हैं, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में श्रेष्ठ गोभी आएगी। ये इसमें मुझे भारत सरकार की ओर से उसको मान्यता मिल गई, 4 कंपनियों के बीजों से टेस्ट करावा है, उनमें श्रेष्ठ बीज अपना निकला, और उस बीज के आधार पर मुझे ICAR ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं मेरे बीज को GP49 के नाम से भारत में कहीं भी भेज सकता हूँ, भारत के अलावा अन्य स्टेट मतलब राज्यों देशों में भी मैं उसको भेज सकता हूँ। तो ये मैंने किया, और जब मुझे पद्मश्री मिली तो मैं मोदी जी के साथ था, तो मोदी जी ने मुझे एक शब्द ये कहा था कि पहला काम आपका फर्ज है कि दुनिया की थाली में जो जहर है उसको बाहर निकालना, दूसरा ये है कि जो भी आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को आपको लिखना है। तो लिखने में मेरा इतना अभ्यास तो था नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके एक छोटी सी किताब परंपरागत एवं जैविक खेती के नाम से पुस्तक लिखी, और उनका उसका विमोचन करवा करके और किसानों तक पहुंचाई, जिसकी कोई कीमत नहीं रखी, और मैं मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए मैंने 2000 कॉपियां ही केवल छपवाई, और वो हर किसान को निशुल्क दी, जो जैविक खेती करने वाले थे उनको नहीं दी जो रासायनिक खेती करने वाले थे। मैंने देखा जैविक खेती करने वालों को अगर अपन बढ़ाएंगे इससे वो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैविक खेती नहीं रासायनिक खेती करते हैं, फिर भी जैविक खेती की तरफ वो अपना करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जैविक खेती का परीक्षण करता हूँ उनके खेत में जाकर, केंचुओं की संख्या कितनी है, मिट्टी में खुशबू कैसी आ रही है, ये सब देख करके जब देखता हूँ कि मेरे को संतुष्टि हो जाती है कि ये आदमी वास्तव में जैविक खेती कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको फ्री में बीज देना, पुस्तक देना पढ़ने के लिए, और हर संभव जहां भी उसको हो मेडिसिन वगैरह ये दे करके उसका सहायता करना, ये मेरा काम है।
3: जगदीश जी, आपने अपने बचपन से लेकर के अब तक की जो कथा है उसको इतने सार रूप में लेकिन इतने मजेदार तरीके से आपने सुनाया कि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने। लेकिन इस कहानी को सुनते हुए मुझे और मेरे ख्याल में ऐसा लगता है मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं सबको एक प्रश्न जरूर आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं पूछ लेता हूं। जब आपके आसपास के साथी जो आपके साथ विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब आपने देखा कि भाई वो नौकरी आदि कर रहे हैं या थोड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे खेत में उतर के दिन दोपहर रात चौगनी काम करना, मेहनत करना, क्योंकि आमतौर पे व्यक्ति क्या करता है जब पढ़ लिख लेता है तो थोड़ा आराम प्रिय जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई करते हुए खेती में वापस जाने का सोचा, लेकिन कभी आपको ऐसा संकल्प नहीं आया, सोच नहीं चला कि कितना करेंगे, थोड़ा आराम करते हैं, ऐसा कभी आपको संकल्प नहीं आया?
4: देखो वैसे आज इंसान के जीवन का भरोसा नहीं, वैसे मैं तो क्षणिक मानता हूँ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन क्षण भर बात क्या होगा उसका मालूम नहीं, ये ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, तो मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आराम है वो इंसान के लिए हराम है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो काम करने के लिए भेजा है उसको पूर्ण ईमानदारी से करें और हम उसके काम को उसके लिए करें, ये सोच कर करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, ये सोच करके मैं कर रहा हूँ। और जब तक आदमी पूजा पाठ करता रहेगा वो करता रहेगा, जब तक वो उसकी भगवान नहीं सुनेगा, उसकी भगवान जब सुनेगा जब वो श्रम करेगा, लक्ष्मी होती है वो श्रम से मिलती है, पसीना बहाने से मिलती है, कुएं के पानी से, नल के पानी से, नहाने से नहीं, पसीने से नहाने से वो मिलती है। इसलिए मैंने जो भी कुछ किया है वो हर इंसान के हित को देखते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए ये काम किया, बाकी भगवान पढ़ू कभी ना, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा ना मैंने कोई गीता रामायण का मुझे कोई ज्ञान है कुछ, मेरे पास केवल श्रम है, श्रम के अलावा।
3: क्या बात है, ये इतना खूबसूरत आपने कह दिया कि श्रम ही वास्तविक आराधना है। दोस्तों सुना आपने, जगदीश जी ने जगदीश को खुश करने का एक ही रास्ता चुना और वो था श्रम, सच्चा निस्वार्थ श्रम, एक ऐसा परिश्रम का माध्यम जिसके द्वारा वो न केवल अपने जीवन लेकिन अपने आसपास के समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुधारना चाहते थे, क्योंकि वो शुरुआत से ही नैसर्गिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती नहीं कर रहे हैं, और श्रम से कभी उन्होंने दिल नहीं चुराया, क्योंकि उनको पता है जहां पर सच्चा निस्वार्थ श्रम है वही उस श्रम का जो समाधान है या जो फल है वो ईश्वर की तरफ से सफलता के रूप में मिलता है। और जैसे जगदीश जी ने कहा कि पूजा पाठ इबादत जो भी हम करते हैं ये तो एक कार्य है एक थोड़े समय के लिए, लेकिन सारे दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, कितने निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, कितने उदारता से, खुले दिल से कर रहे हैं, वो हमको हमारे सफलता के और ईश्वर के नजदीक लेके जाता है। जगदीश जी, जब आपने ये कहा कि जब मैं गांव वापस आया और मैंने देखा कि जमीन मेरे पास है, मैं उस पर खेती कर सकता हूँ, जिस जमाने की आप बात कर रहे हो उस जमाने में रासायनिक खेती बस शुरू ही हुई थी, है ना, उसका कोई इतना बड़ा प्रचार नहीं हुआ था, और आज के जमाने में हर कोई, भले हम मजबूरी से वही भोजन करते हैं जो रासायनिक खेती से आता है, लेकिन सबको पता है कि रासायनिक खेती जहरीली है, उससे आने वाला अन्न भी जहरीला है। आज हमारे पास वो जागरूकता है, आपके जमाने में आपके पास वो जागरूकता कहां से है, क्योंकि उस जमाने में ना हमारे पास इतना गूगल था, ना इंटरनेट थी, ना लोग इतना जानते थे कि रासायनिक खेती का क्या क्या अभिप्राय होने वाला है। उस जमाने में आपने कैसे सोच लिया कि ये खेती राइट नहीं है, ये गलत है और मुझे इससे बचा के रखना अपने जमीन को।
4: देखिए सबसे बड़ा क्या होता था कि मेरे पास से और भी जो जमीनें थी उनमें वो रसायन डालते थे, तो उनमें केंचुए वगैरह मौजूद नहीं रहे और मेरी जमीन में मैंने नहीं डाला, तो ये एक प्रयोग हो गया, ये मुझे सिखाया गया। ये दूसरी बात, मेरे मामा जी जो थे वो सरकारी बीज को, सरकारी सहायता को या सरकारी उनको भी अंदर नहीं जाने देते थे, तो ऐसी स्थिति थी। हमें अगर पेशाब करने के लिए भी अगर बाहर जाना पड़ता तो उस जहां हम खेती कर रहे हैं वहां नहीं जा सकते, तो खाली जमीन दूर हो वहां जाना पड़ता था। वहां अगर कोई खेत में पानी दे रहा है, अचानक उसकी इच्छा हो गई मैं जाऊंगा, तो बाहर जाए पानी छोड़ करके, चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन वो उसको नहीं जाने देते थे। कभी भी मृदा में हमने गलत पानी नहीं दिया, गलत पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए मेरे दिमाग में था कि गलत जो चीजें हैं वो नहीं, केवल हमें वो जो प्रकृति से मिलती है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें।
3: तो इसका मतलब आपके परिवार में ही शुरू से कृषि को केवल एक कार्य नहीं लेकिन एक पूजा या एक आराधना के रूप में देखा गया। जैसे मंदिर में भी हम अपने शुचिता का या पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आपके मामा ने ये नियम बना दिया था कि भाई खेत में जब आप हैं तो केवल खेती ही करना है और दूसरा कुछ कर नहीं करना है। लेकिन आपको ये सुनने में तो आया होगा कि भाई रासायनिक खेती करने से उत्पादन बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कभी दिल नहीं हुआ कि मैं थोड़ा उधर से भी कर लूं?
4: मैं जब जैविक खेती कर रहा था उत्पादन मेरा बढ़ रहा था, और जो मेरे पड़ोसी रासायनिक खेती कर रहे उनका उत्पादन घट रहा था, क्योंकि मृदा की जैविक शक्ति में निरंतर जब गिरावट आती है तो उत्पादन घटता है, और जब मृदा की जैविक शक्ति में बढ़वार होती है तो उत्पादन बढ़ता है। तो मैं जब रोज ये देखता कि इनका उत्पादन मेरे से कम है, मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर मैं तो मेरी वाली टेक्नोलॉजी लगाऊंगा, उनका तो मैं सवाल ही नहीं, उनकी देख रेख करूंगा, वो मेरी देख रेख कर रहे हैं, मैं उनकी देख रेख नहीं कर रहा
3: जी। तो जगदीश जी, मुझे एक चीज यहाँ पर जानना है आपसे, जैसे आपने कहा कि केवल आपने फूलगोभी पे आपने फिर फोकस किया, लेकिन आपने सभी प्रकार के खाद्य अन्नों में, चाहे वो सब्जी हो, टमाटर हो, फूलगोभी हो, बैंगन हो, आपने हर एक पे अपना प्रयास किया। मुझे एक चीज जानना है, जैसे ये जो विविधता है, एक ही जमीन से विविध प्रकार के भोजनों का उत्पादन करना, ये जैव विविधता जो है ये बहुत जरूरी है, और ये आजकल के किसान जो है वो इस पे ध्यान नहीं देते, वो केवल धान चावल या जो पैसे जिन अन्न से या जिस प्रकार के उत्पादन से पैसा जल्दी मिल सके या ज्यादा मिले वो उस पे फोकस करते हैं, ऐसे प्रयासों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी देखो, सबसे बड़ा तो क्या है कि मैं जैविक किसान हूँ, और जो मुझे पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है वो जैविक खेती के ऊपर दिया है, न गोभी के ऊपर। 25 किलो 150 ग्राम गोभी बढ़ाने पर नहीं, जैविक खेती करने वाला मैं एक पहला किसान हूँ, और आज तक किसानों को किसी को दिया भी नहीं जैविक खेती में। अब तक भारत आजाद होने में 19 में मुझे मिला, लेकिन अब तक किसी को भी नहीं मिला पुरस्कार, पद्मश्री केवल मुझे मिला है, और मैंने जैविक खेती की। जैविक खेती का असली क्या होता है, आपके हम लोग जो खेती कर रहे हैं वो जैविक खेती नहीं है, वो है जहर मुक्त खेती। जैविक खेती वो होती है, मैं वो आपको जैविक खेती की परिभाषा बताता हूं, जो खेती केवल जीव से की जाए, जिसमें जोतने के लिए बैल हो, अनाज को निकालने के लिए बैल हो, मंडी में माल ले जाने के लिए बैल हो, और जितने भी काम किए जाए जीव से किए जाए, जीव के अलावा किसी से नहीं किए। लेकिन रासायनिक खेती में क्या है, जीव को छोड़ दिया और सब ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर से मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि असंभव है, 8 इंची बोर में से चरस को पानी कैसे निकालेंगे, तो असंभव चीज जो दो तरह की है उनको मैं भी काम में ले रहा हूं, लेकिन वो जहर डाल रहे हैं मैं जहर नहीं डाल रहा हूं। जैविक खेती का मुख्य ये है कि हमें जीव को बचाना है। गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसक नहीं बनना है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, और अहिंसा जब होगी जब मृदा में केंचुए के साथ 400 तरह के सूक्ष्म जीवाणु साथ रहकर चलते हैं, जैसे एक ट्रेन में सवारियां लग के चलती है वैसे। इसके अलावा भी मृदा में हजारों तरह के ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारी वनस्पति को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, जो ऐसे जीव हैं जो उसके लिए नुकसानदायक हैं, उनसे फसल को बचाते हैं, उनको खाते रहते हैं, हमारी फसल को बचाते हैं। लेकिन वो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, हम सोते हैं लेकिन वो दिन रात केंचुआ हमारे लिए दिन रात काम करता है। लेकिन रासायनिक खेती में हम उनको मारते हैं, जो हमारे लिए करता है हम उनको मारते हैं, तो हम हिंसक हो गए
3: जी।
4: लेकिन वास्तव में जैविक खेती करने वाला किसान वही होगा जो अहिंसक होगा, जो कभी किसी जीव को नहीं मारेगा, केवल जीव को हटाकर अपनी खेती को आगे बढ़ाएगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं किसी जीव को नहीं मारूं, जीवों से हटाऊं। दूसरी बात, मेरे हाथ से एक बच्चे से लेकर के बूढ़े आदमी तक, पशु पक्षी और जानवर, किसी को भी मेरे हाथ से एकमात्र अंश भी जहर का नहीं खिलाया जाए, मैं शुद्ध उसको खिलाऊं, और ये मेरा उद्देश्य है।
3: वाह, सुना दोस्त आपने, जगदीश जी ने जैविक खेती की इतनी सरल और इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा आज हमारे सामने व्यक्त की है कि जैविक कृषि हम उसे कहेंगे जो जीव प्रधान कृषि है, जिस कृषि को करने के लिए जीव, चाहे वो बैल हो या केचुए हो या पक्षी हो या तितलियां हो, इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा, जैविक कृषि या जैविक कृषि करने वाला किसान वही है जो संपूर्ण अहिंसक है, मन में भी जिसके किसी को नुकसान पहुंचाने का जरा भी ख्याल ना आए वो किसान जैविक कृषि कर सकता है। इसका मतलब जो अहिंसक है, जिसके विचारों में शुद्धता है, प्रेम है, सद्भावना है और करुणा है, केवल वही किसान जो है जैविक कृषि में सफल हो सकता है। और वही किसान जो है जैविक कृषि के द्वारा न केवल खुद का लेकिन सबका सात्विक भरण पोषण कर सकता है। इसी दायरे में मेरे को एक और सवाल पूछना था कि आप किसानी कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं, आपके जैसा एक अनुभवी कृषक का अपने आसपास में होना कई लोग जो है सौभाग्य समझते होंगे, फिर कईयों को थोड़ा सा ईर्ष्या भी होता होगा। तो कभी आपने इस प्रकार का कुछ अनुभव किया है जहां पर लोग आपके खेती को खराब करना चाहते हो या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के प्रति आप क्या करते हैं? क्योंकि हमारे भी कई ऐसे किसान साथी सुन रहे होंगे जो कई बार इस प्रकार के परीक्षाओं का सामना करते हैं कि उनकी फसल अच्छी होती है तो कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और आप कह रहे कि मुझे अहिंसक का पुजारी होना है, मुझे अहिंसा का मार्ग पकड़ के रखना है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं?
4: देखिए, होते हैं ऐसे, लेकिन उनसे भी हमें सीखने को मिलता है, वो हमारे बारे में किस तरह की आलोचनात्मक बातें करते हैं, तो उनके बातों से हमें सावधान होकर के अगर हम जीवन में कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हम सही मार्ग पर आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का पारस में होना बहुत जरूरी है, वो जो अगर होंगे तो उनसे हमें सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये उनसे नहीं सीखना है कि हमें किसी की चुगली करनी है, किसी को नुकसान, केवल ये करना है कि उनके मुंह से जो निकल रहा है हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं वास्तव में तो उसमें सुधार करें, बस इसी काम में लेते हैं उनको, बाकी उनकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें वही करना है जो हमारी जो अंदर से आत्मा कहती।
3: तो आपके सामने कभी ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई जहां पर लोग आपका विरोध कर रहे हो?
4: नहीं आई, मैंने आज तक 100 से करीब रेडियो प्रोग्राम दे चुके, 100 से ज्यादा। सन 1983 से मैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम दे रहा हूँ किसानों के लिए जैविक खेती का, 1990 से आकाशवाणी पर प्रोग्राम दे रहा हूँ, और लोकल जो आकाशवाणी के करीब वो बने हुए हैं उनके द्वारा भी मैं देता हूँ, मेलों में केवीके में भी मैं जाता हूँ, और एग्रीकल्चर कॉलेज में बच्चों को लेसन देने के लिए भी मैं जाता हूँ। और मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भटक रहे हैं वो क्या बैक टू पवेलियन, वापस अपनी जगह आ जाए, वो उसी जगह जहाँ हमारे पूर्वज थे, और आकर अच्छा, के इस तरह की खेती करें।
3: जब आपने ये बात कही कि बैक टू पवेलियन, आपने ये भी कहा कि आप कई कॉलेजों में जाते हैं, तो आप बहुत युवा वर्ग के साथ भी रूबरू होते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं, आपको नहीं लगता कि युवा वर्ग जो है आज बहुत ज्यादा पैसे के पीछे या लाभ के पीछे, नौकरी के पीछे भागता है, उनको ऐसा लगता है जल्दी सफलता जिसमें मिले हम वो कर लें, तो आप कभी ऐसे युवाओं के साथ भी मिल चुके होंगे, तो आपने उनको क्या मार्गदर्शन दी?
4: देखिए, मैं जब 1992 में कॉलेजों में जाता था तो गिनती के गिने चुने एग्रीकल्चर कॉलेज थे, लेकिन आज उनसे 50 गुना एग्रीकल्चर कॉलेज हो गए। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के बहुत कम थे, आजकल कॉलेजों एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। मेरे भी दो पोते हैं, एक बीएससी एजी कर ली और एक के सेकेंड ईयर में है। अब जो बच्ची हायर सेकेंडरी में आई है उसको भी मैं अगले सेकेंडरी करके हायर सेकेंडरी में अगले साल उसको भी मैं एजी दिलाऊंगा। लेकिन हर आदमी की इच्छा है कि मेरा बच्चा जाकर के कृषि शिक्षा में जाए और हमारी जो जमीनें हैं उनको अच्छे तरीके से संभाले, अच्छे तरीके से खेती करे, ये सब इच्छा है। और जो हमारे यहाँ जितने कॉलेजों में बच्चे हैं सब किसानों के बच्चे हैं, उनमें अध्यापक हैं वो भी ज्यादा किसानों में किसान परिवार से हैं, तो हम उनको समझाते हैं, करते हैं और वो बहुत लग रहे हैं। मैं पिछले सालों से ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे को हर साल में कम से कम 10 पेड़ लगाने हैं, तो मैंने बहुत सौ के यहाँ देखा, बहुतों ने पेड़ अपने पेड़ लगाए, वो दिखाए मुझे जो 4-5 साल में बहुत बढ़िया पेड़ हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सब मिलकर उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, ऐसा उनको मंत्र देते हैं कि उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़े, और इच्छा शक्ति बढ़ने से वो काम करेंगे, जब वो काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। काम करने वाले आदमी को निराशा कभी नहीं मिलती।
3: मतलब मैं तो आप दिल कर रहा है कि बस आपको सुनते ही रहूं मैं कुछ पूछू ही नहीं ऐसा मन करता है, क्योंकि आपने इतने सरल भाषा में इतनी पावरफुल एक बात कह दी कि काम करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा होती ही नहीं है। वाह, साथियों सुना आपने, मतलब आज का हमारा ये एपिसोड मुझे ऐसा लगता है जैसे सरल लेकिन सफल जीवन का एक बहुत सुंदर निचोड़ है, जहां पर एक सफल सिद्ध व्यक्ति सरल भाषा में हमें बता रहा है कि जीवन में सफलता कैसे पानी होती है। चाहे आप कृषि करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या घर संभाल रहे हैं, हर परिस्थिति में सफलता पाने के लिए परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। दूसरी जो बात कही जगदीश जी ने वो बहुत अच्छी बात कही कि जहां दृढ़ता है वहां पर सफलता होती ही है। जैसे उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से जो युवा साथियों से वो मिलते हैं, वो युवा साथी पेड़ भी लगाते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं, और जमीन का ख्याल रखने के लिए भी उनके दिल में इच्छा जगती है। जब आपने पेड़ लगाने की बात कही जगदीश जी, मैं समझता हूँ आपने खुद भी बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे, कभी आपने काउंट किया है, गिना है कितने पौधे लगाए हैं आपने?
4: मैंने कई हजार पेड़ तो ऐसे लगा दिए फलदार पेड़, जैविक पद्धति से, जैविक खाद से, उस पर किसी तरह का रासायनिक प्रयोग नहीं किया। देखो बीमारियां सबके होती है, इंसान के भी होती है बीमारियां, फलों में भी होती है, फलदार पेड़ों में भी होती है। लेकिन एक कहावत है ना अपने यहाँ कि उगता सूरज की किरणा, दोनों वक्ता की मस्त हवा, और चोखो दूध दही में खावा फिर क्यों लेवा व्यर्थ दवा। जब ये चीजें में खाने को मिलती है तो दवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पेड़ को दोनों टाइम शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाद मिले, तो उसकी बीमारी नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो वो ही परंपरागत चीजें हैं, जैसे आक है, नीम है, चूना है, ऐसी चीजें जो हमारे प्रकृति में थी, हमारे बुजुर्ग जिनका प्रयोग करके उनको सही करते थे वही करते हैं। कहावत ले कि जिस देश में आग और नीम है तो चंदन क्या करेगा और बुद्धि दिल्ली का मुकाबला लंदन क्या करेगा। परंपरा
3: ये तो बहुत जबरदस्त कहा आपने, बहुत ही जबरदस्त कहा कि भाई जिस देश में आग और नीम है वहां चंदन क्या करेगा, और फिर लंदन की भी बात कह दी आपने, कमाल। लेकिन जगदीश जी मेरे को आपसे
4: मुकाबला लंदन कर ही नहीं सकता,
3: जो कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे को एक और उत्सुकता हो रही है, वो ये कि जब आप भारत का ऐसा भ्रमण करते हैं, चारों दिशाओं में आप जाते हैं, हर जगह से आपको निमंत्रण मिलता है, हर जगह के किसानों से आप मिलते हैं, हर जगह के विद्यार्थियों से भी आप मिलते हैं, तो भारत का ऐसे आप पूरा कोना कोना जा चुके होंगे। मुझे आपसे एक चीज जानना है कि विविधताओं भरे इस देश में जब आप भ्रमण करते हैं, कौन सी एक बात है जो आपको ऐसा लगता है कि सब जगह एक ही है, कौन सी एक चीज आपको ऐसी लगती है जो चारों तरफ सेम लगती है, आपको सिमिलर लगती है, एक जैसी लगती है?
4: मेरे को सेम ये लगती है कि सब किसान जितने भी हैं वो सब देखा देखी करते हैं, भेद जात चलते हैं, बस यही एक चीज मेरे को हुआ ही। अगर एक किसान ने कर दिया, आगे पांच करेंगे, फिर 50 आएंगे, उसमें नुकसान फायदा नहीं देखेंगे, वो सब भेद जात चलेंगे, बस यही देखा मैंने सब जगह। मैं केरल में गया, मद्रास में यहाँ गया, महाराष्ट्र में गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सब जगह गया। वो किसान में वही एक आदत है भेड़ चाल। तो उस भेड़ चाल चलने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो चार किसानों का एक ग्रुप बना करके और उनको लगाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे सबको अपने आप आ जाते हैं। ये एक तरीका निकाल रखा है, हमें यही हुआ है भेड़ चाल के अलावा किसान के पास सब जगह विविधता में एकता, यही समझता हूँ।
3: ये तो बहुत जबरदस्त, आपने हंसी मजाक में कह दिया कि विविधता में एकता इस बात की कि लोग देखा देखी बड़ा करते हैं और देख देख करके, दूसरे का देख करके वैसा अनुसरण करने में बड़े होशियार हैं, लेकिन कई बार ऐसे अनुसरण करते हुए वो गलत का भी अनुसरण कर लेते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में आप उनको कैसे बचाते हैं?
4: गलत करते हैं, ये करते हैं, जब हमारे देश का बासमती चावल जो बाहर जाकर बिकता था उसके अच्छे दाम मिलते थे और जो बाहर से पैसा आता वो खूब हमारे देश में आता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि हमारे किसानों ने हर बीघा में एक एक कट्टा यूरिया का डालना शुरू कर दिया, रिकमेंड होती है 7-8 किलो की और वो डाल रहे हैं 40 किलो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मृदा होगी वो सख्त होगी और उनका जो उत्पादन होगा उसमें एक तरह का पूरा ढेर होगा, और जब वो चावल बाहर जाएगा परीक्षण होगा तो लोगों ने वो बासमती चावल का रेट कम कर दिया। तो मुझे और मेरे एक साथी को और बासमती में चावल में जो जहर डाला जाता है उसको कम करने के लिए मुझे भेजा और मैं गया यहाँ चंडीगढ़ की तरफ और 2 महीने तक लगातार रहा, उनको खूब समझाया। लेकिन आज मैं, हम लोग समझाते हैं, रात को मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन सुबह जब जाके देखते हैं तो वो गाड़ी में 2 कट्टे डाल करके खेत में जा रहे, ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम 2 महीने तक उनके पीछे ही पड़ गए तो वहां बहुत से किसान ऐसे निकल के आए जो आज कम से कम 50% किसान ऐसे हैं जो यूरिया का, DAP का, रासायन का, कीटनाशी दवा का इस्तेमाल नहीं करते और उनका वो चावल है क्वालिटी में, क्वांटिटी में तो क्या होगा ही, क्वालिटी में सबसे बेहतर है। इसलिए इसमें समझाया जाता है,
3: इसमें जिस समझ की कमी है मुझे ऐसा लगता है, शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि इसमें जिस चीज की कमी है वो ये कि हम जमीन को केवल जमीन समझते हैं या हम खेती को केवल एक कार्य समझते हैं। जिस दिन हम जमीन को केवल जमीन नहीं लेकिन धरती माँ माँ के रूप में जब हम देखेंगे तो उसके प्रति जो भी हम अन्यायपूर्वक कर्म कर रहे हैं उसको करने से हम बचेंगे। आपको ये बात सही लगती है?
4: देखिए, ये है हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम लोग मानते हैं, गंगा, जमीन, गाय, स्वयं की माँ, ये तो सब चारों पांचों माँ है, ये उनको माँ के रूप में देखा जाता है। और जब जमीन को हम माँ समझते हैं, धरती माता समझते हैं और माँ समझ करके उसके पास जाते हैं, हम जैसी उसकी सेवा करेंगे, माँ की तरह जैसी सेवा करेंगे वैसा ही वो हमसे ज्यादा वो करेगी, तो हम माँ समझ करके उसकी सेवा करेंगे तो वो हमें अच्छा ही देगी। लेकिन हम उसमें जय डालेंगे और उसकी अच्छी सेवा नहीं करेंगे, खरपतवार हो रही है, खाद समय पर नहीं डाला जाता है, पानी नहीं डाला जाता है, तो उत्पादन देना वो बंद कर देंगे। तो उसको हम माँ समझते हैं, हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में गाय को भी माँ समझते हैं, माँ समझ करके ही उसके गोमूत्र को, गोबर को, उनको हमारी जमीन में डालते हैं। जब तक हमें गाय का गोबर मिलता है, जब तक भैंस का गोबर खाद मिलेगा।
3: साथियों, आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मधुबन और कार्यक्रम चल रहा है यशस्वी भारत, और यशस्वी भारत के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी, जो राजस्थान के शिखर जिले से हैं और भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी हैं। आप एक सम्माननीय देश के जैविक किसान हैं जिन्होंने जैविक कृषि के द्वारा पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है, जहां पर जहरीले भोजन को उगाने में लोगों को वो समझाते हैं कि कितना ये नुकसानकारी है, न केवल खुद के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी। जगदीश जी, आपसे बात करते हुए मुझे एक और सवाल मन में आया है, वो ये कि जैसे आपने बताया कि भाई आप फूलगोभी में दूसरे नंबर पे हैं और आप अभी भी लगे हुए हैं कि वो 850 का जो फर्क है उसको आप निकालें, ऐसे आपके मन में और किन किन चीजों का ख्याल आता है कि और कौन सी चीजें नहीं करनी है आपको?
4: नहीं करनी है,
3: नहीं
4: नया करना नहीं, है
3: नवीनता, नया नया नया।
4: देखो, हर जो चीज की चुकता होती है उसकी चुकता से आगे बढ़ता है आदमी। हमारे पड़ोस में एक महिला थी और उस महिला को ऑपरेशन करवाना था, लेकिन उसके यहाँ ब्लड की कमी थी, तो वो मेरे पास आई क्योंकि मेरा जो ब्लड था वो ओ नेगेटिव था और उस ओ नेगेटिव ग्रुप की उसको आवश्यकता थी। तो वो मेरे पास आई, बोले मेरे को खून चाहिए। और मैंने कहा ठीक है, मेरा ओ नेगेटिव है, दो बच्चे और हैं उनका ओ नेगेटिव है, आपको मिल जाएगा। जब 10 दिन बाद मैं तक वो नहीं आई, उसको फिर घूमते फिरते देखा मैंने, तो मैंने कहा आप तो ऑपरेशन के लिए जा रही थी, आपको खून की आवश्यकता हुई, फिर क्या हुआ? बोले मैंने चुकंदर और उसका जूस निकाल करके पिया, तब मेरे ब्लड की रिकवरी हो गई आदमी। तब से मैंने चुकंदर बोना शुरू कर दिया और आज करीब 2 लाख रुपए साल की चुकंदर बेच रहा हूँ। और बेच तो रहा हूँ, लेकिन वो आदमी जो खरीद करके नहीं खा सकता, बीमार है और गरीब है, उसको फ्री में देता क्योंकि मैं खून तो नहीं दे सकता, लेकिन खून के बदले में उनको फ्री वो देता। मैं पैसे उनसे लेता हूँ जो पैसा देने काबिल होते हैं, अगर वो पैसा देने के काबिल नहीं है तो उनसे पैसा भी। तो ये क्या होता है कि आदमी आवश्यकता जैसे जैसी होती है वो आगे नया नया सीखने की कोशिश करता है। फूलगोभी के साथ मैंने कई तरह की सब्जियां बोई, कई तरह के वो लगाए, कई तरह के ऑर्गेनिक बगीचे लगाए जो फल फूल रहे हैं, और उनको कई मंदिर ऐसे हैं जिनके मंदिर की जमीन पड़ी हुई है और उनमें कोई नहीं, सिर्फ बाबा जी हैं, तो उनको फलदार पौधों का बगीचा लगा दिया, उनसे उनके 4-5 लाख रुपए साल की मंदिर में आय होती है। तो वहाँ आने वाले साधु सब भोजन करते हैं, मंदिर में गाय होती है, वो उनके लिए चारे की व्यवस्था होती है, घंटे की व्यवस्था होती है, उनकी व्यवस्था हो रही है। ऐसे क्या है कि ये जो धर्मार्थ काम है वो भी मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और उनसे मुंह मोड़ना भी एक तरह का भगवान से मुंह मोड़ना।
3: तो जैसे जगदीश जी ने कहा कि धर्मार्थ के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनसे मुंह मोड़ना मतलब अपनी खुशियों से मुंह मोड़ने जैसा है। धर्मार्थ के कार्य से मुंह मोड़ना मतलब परमात्मा से मुंह मोड़ने जैसा है। इतने सुंदर विचारों के साथ जगदीश जी आज हमारे साथ हैं। जगदीश जी, भारत की खासियत क्या है, आपको क्या लगता है भारत को भारत कौन सी बात बनाती है?
4: मेरे को तो सर जितनी जो भी खासियत है केवल भारत में दिख रही है, और कहीं दिख नहीं रहा, और कोई देश में कुछ नहीं दिख रहा है। न वो माँ को माँ समझते हैं, न बहन को बहन समझते हैं, न उनमें कुछ नहीं है, न उनको किसी तरह की मर्यादा है, केवल स्वार्थ और पैसा है सब कुछ। यहाँ मान सम्मान धर्म ईमान सब कुछ मेरे को तो भारत में दिखता है, भारत के बाहर कुछ नहीं दिखता है। और मैं ये सोचता हूँ अगर पुनर्जन्म भी मेरा हो तो भारत में ही हो, मैं तो ये चाहता हूँ। कुछ नहीं देखा, जो कुछ चीजें हैं भारत में, इसके बाद बाहर नहीं है कुछ भी।
3: भारत माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उसका एक ऐसा रतन पुत्र बार बार उसकी सरजमी पे जन्म लेना चाहता है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको भारत के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, यही कारण है कि भारत देश के लिए आप यशस्वी हैं, और भारत को यशस्वी बनाने में आपका योगदान इस वजह से भी अभूतपूर्व है। जगदीश जी, जाते जाते मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब आपको एक शब्द में देना है ना, बहुत जल्दी जवाब देना है और एक एक शब्द में जवाब देना है। आप तैयार हैं?
4: जी तैयार हूँ, जवाब मैं बोल सकूंगा बोलूंगा, नहीं तो साइलेंट हूँ। बोलिए आप पूछिए।
3: मुझे नहीं लगता कि आप हारेंगे, आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि आपकी खासियत है हंसते हंसते
4: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहला सवाल आपसे, श्रम क्या है?
4: जो आत्मा से किसी काम को किया जाता है, दूसरे का इंतजार नहीं किया जाता है, और जितना हम कर सकते उससे भी ज्यादा वो करे और निस्वार्थ करे, सताश्रम वही मानता हूँ, निस्वार्थ हो।
3: बहुत सुंदर। निस्वार्थ क्या है?
4: निस्वार्थ है ये कि जिससे मुझे देना ही है, मुझे भलाई करनी है, बदले में मुझे कुछ नहीं देना, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसे मतलब हम किसी को दान
3: देते, हिसाब किताब नहीं लगाए, क्योंकि लोग आजकल कुछ अच्छा भी करते तो हिसाब लगाते हैं।
4: केवल अपने केवल करना है।
3: जी जी, कई लोग किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं तो भी सोचते अभी तक देखा नहीं, रिप्लाई नहीं किया, तो ये जो आशाएं बांध के रखते हैं उन आशाओं से फ्री होना।
4: ये लोग जो बोलते हैं ना, वो लोग होते हैं जो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड मोर अर्निंग, वो लोग होते हैं वो जो आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग वाले लोग, नमस्ते वाले हैं तो नमस्ते वाले, जय राम जी की करने वाले।
3: सुना दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं कहते ऐसे लोग, वो कहते हैं गुड मोर अर्निंग, मतलब थोड़ा और अच्छा कमाई हो जाए, तो इसीलिए नमस्ते मतलब
4: कमाई से।
3: जी जी बिल्कुल। आप जगदीश जी, जो चीज मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है, जैसे पत्ता गोभी का एक परत होता है ना, एक पत्ता खुलता जाता है, ऐसे आप भी बड़े हसमुख और हसमिजाज व्यक्ति हैं, ये चीज जरूर खुल के समझ में आ रहा है। तो तीसरा सवाल आपसे, प्यार क्या है?
4: दो आत्माओं का जो दिखावा नहीं हो, दो आत्माओं का जो मिलन होता है, वही असली प्यार होता है। निस्वार्थ,
3: निस्वार्थ बिल्कुल। निस्वार्थ। शांति क्या है?
4: शांति वहां होती है जहां आदमी डट करके रुक करके ये फैसला कर ले, मुझे जो मिल गया वही ठीक है, वही शांति, मुझे जो मिल रहा है उसी में खुश, संतुष्टि यही है कि मेरी आत्मा हो गई, मुझे जो मिल गया अब उसमें मैं पर्याप्त है, मुझे और आगे कुछ नहीं चाहिए।
3: प्रकृति क्या है?
4: प्रकृति वो है जो कई तरह की चीजें हमें दे रही है और हमारे लिए एक ऐसा वो क्या कहते हैं, जाल टाइप का वो बना हुआ है, जिसमें हमें हर तरह की जो जीवन उपयोगी चीजें हैं वो उससे मिलती है, जैसे प्राणवायु उससे मिलती है, खाने के लिए भोजन प्रकृति से मिलता है, पीने के लिए पानी प्रकृति से मिलता है, आग प्रकृति से मिलती है, हर चीज जो हमें मुहैया करवाई जाए वही प्रकृति, मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा ही।
3: अजीतगढ़ में खासियत क्या है आपके हिसाब से?
4: अजीतगढ़ एक मिनी हिंदुस्तान है, जो आप हिंदुस्तान कहते हैं, उत्तर में हिमालय है, हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय में की जगह पहाड़ है, उस हिमालय में मानसरोवर है, तो उसमें हमारे यहाँ एक बांध बना हुआ है बहुत अच्छा जिसमें पानी है, और एक शिव मंदिर बना हुआ है। दक्षिण में जो लंका है उसकी जगह एक टापू बना हुआ छोटी ढाणी है, उसको कहते हैं गंगा सागर। बाकी ये आगे आसाम वाला हिस्सा है, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा वाला, ये तो ऐसे गाँव लंबा साइड में बसा हुआ है। दूसरी पाकिस्तान जिस पश्चिम साइड में है, तो हमारे गांव के पश्चिम साइड में मोमडन्स है, और बांग्लादेश जो जहां स्थित है वहां मिजोरम मणिपुर उनके बीच में करता साइड में, फिर वहां हताशगढ़ मुसलमानों के हैं, और ये उसी तरह लंबाई से जाता है, और जहां हिंद महासागर प्रशांत महासागर वगैरह जो सागर है, वहां हमारे यहाँ पानी के स्रोत है, जहाँ इकट्ठा होकर के हमारे गाँव वालों को खेती वाटर रिचार्ज करने के लिए वहां से पानी मिलता है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए अजीतगढ़ हिंदुस्तान है।
3: क्या बात है। और दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपको पूरा भारत घूमने का मौका नहीं मिलता तो जरूर कभी समय निकाल के अजीतगढ़ पहुंचिएगा, आपको भारत दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल, अजीतगढ़ जरूर जाइएगा, और मैं समझता हूँ अजीतगढ़ जाएंगे तो कोई भी गांव का बच्चा बच्चा जो है आपको जगदीश जी के घर तक तो जरूर पहुंचा देगा, और क्या पता आपको जगदीश जी के हाथों से उगाई हुई फूल गोभी या टमाटर या बैगन का स्वाद चखने को मिल जाए। जगदीश जी, आपसे एक और सवाल, भारत क्या है?
4: जी, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के रहने वाले लोग हैं, और सब लोग सभी के धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, और एक दूसरे से भाईचारा की भावना से रहते हैं। यहाँ पर प्रकृति से बहने वाली नदियों को माँ के रूप में मानते हैं, यहाँ प्रचरण कर घूमने वाले जो पशु हैं, गाय जैसे है, उनको माँ के रूप में मानते हैं और सब आपस में एक दूसरे से भाईचारा रखता है, बस यही है, सब में भाईचारे की भावना है।
3: आपके विचार बहुत सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली, सुनते हुए भी अंदर में शक्ति भरती है। आखिरी सवाल, जगदीश प्रसाद पारिक कौन है?
4: जगदीश शक्ति अलग है, मैं तो मात्र उसका केवल प्रसाद हूँ। जो आपके सामने मैं बैठा हूँ केवल जगदीश का प्रसाद हूँ, जगदीश तो ऊपर है, जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, शक्ति दे रहा है, बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है वो है, मैं तो उसके मात्र प्रसाद के रूप में हूँ।
3: क्या बात है, सुना दोस्तों आपने, सब कुछ करने वाला व्यक्ति जब इतना नम्र हो तो क्यों नहीं खुदा उस पर मेहरबान होगा। जगदीश जी ने अपने को जगदीश का प्रसाद समझा और इसलिए आज वो हर एक के प्लेट पर, हर एक की थाली पे प्रसाद पहुंचा रहे हैं, प्रकृति का भी। वो अपने प्रयास से हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जिसपे, जिसके पास भी उनके द्वारा उगाया हुआ भोजन पहुंचे, वो स्वस्थ हो, वो निरोगी हो, उसकी कायाकल्प तरु हो जाए। जगदीश जी से आज हम बात कर रहे थे, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जैविक कृषि करने वाले अहिंसक किसान है। जगदीश जी ने आज हमारे बीच में कई ऐसी बातें कही जिनको सुनते हुए ऐसा लगा शायद जीवन का सार जो है इतना कठिन नहीं है, बड़ा सरल है और बड़ा ही आसान है, सिर्फ उसे याद करना और उसे जीवन में ढालने की जरूरत है। जाते जाते हम जगदीश जी से सुनना चाहेंगे कि जगदीश जी, आप अगर हमारे श्रोता साथियों को कोई एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो युवा है या घर पे सुन रही माताएं बहने हैं, अगर कोई भी एक संदेश आपको देने का मन करता हो तो क्या संदेश होगा?
4: मैं जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर करवद मेरा निवेदन है कि जितना हो सके हमें पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, नर सेवा करें, नर सेवा के अलावा पशु सेवा करें, जीव सेवा करें, क्योंकि जो नर सेवा है वही वास्तव में नारायण सेवा है। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे किसी भी है पैसे की भी सहायता करें, अन्य की भी सहायता करें, हर तरह से जितनी हो सके जितनी सहायता करें, क्योंकि हम जब जाएंगे तो ये जो हमारे पास है वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लेकिन हम जब हम सहायता करते हैं तो हम भी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा, दूसरी बात, जो आज नदा में जहर घुल रहा है उसको आप लोग सब मिलकर के बाहर निकालें, ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किसी प्रकार की बीमारी से लिप्त नहीं हो। आज हर 8 साल 7 साल के बच्चे की चश्मा चढ़ रहा है, हर आदमी के 50-40 साल की उम्र में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, 10-5% लोगों के तपेदिक तो खैर नहीं है लेकिन कैंसर जैसी महामारी बीमारी से ग्रसित है, तो उन सब की हमें सेवा भी करनी चाहिए, हो सकता है आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए और दूसरों उनको उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए, बाकी आगे नहीं हो इसके लिए हमें थाली से जहर को निकालना है। जो गेहूं का हम प्रयोग कर रहे हैं ज्यादातर हमारे जीवन में सुबह और शाम रोज, उसको छोड़ करके मोटे अनाज का प्रयोग करें, मोटे अनाज को खाएं, ताकि आने वाली बीमारियों से हमें निजात मिले।
3: जगदीश जी, आपने जाते जाते सबके लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं भरी बातें की, आपने जो ये संदेश दिया कि सुबह शाम जो हमारे थाली पे केवल गेहूं है या एक ही प्रकार का अन्न है उसको बदल के श्री अन्न या मोटा अन्न जो मिलेट्स कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि सेहत बनी रहे, साथ ही आपने ये भी बताया कि हमें हर प्रकार से ये कोशिश करनी चाहिए कि जहरीला अन्न ना हम तक पहुंचे ना किसी और तक पहुंचे, इसके लिए जैविक पद्धति से उगाए गए भोजन को अगर हम अपनाते हैं तो जैविक कृषि करने वाले किसान को भी बहुत सहायता मिलती है। और जैसा कि आपने पहली अपील की हम सबसे कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की सहायता, इसमें ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपने ये संकल्प जरूर लिया होगा कि अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनकी सहायता जरूर करें और जितना हो सके कोशिश करें जैविक अन्न को अपनाने की, इससे एक

0: बहुत कुछ सीखा। आने वाले एपिसोड में हम आपके बीच में एक और एक ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को यशस्वी बनाया है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा, और जी हाँ, जैसा जगदीश जी ने कहा, परिश्रम से कभी दिल नहीं चुराइएगा, श्रम से ही साधना है। जय हिंद, जय भारत।
1: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
2: अश्विनी
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
3: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
4: साधी भोळी माझी आई, सुखा जग कोसावली।
1: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है कर्मों की गति। चलिए मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करता हूं कर्मों की गति के ऊपर। मनुष्य के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होती है। यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। कर्मों का प्रभाव जीवन में तात्कालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक। यह आवश्यक नहीं कि हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिले, लेकिन समय आने पर यह अवश्य मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कर्मों का महत्व क्या होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है और यह हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है और यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन वास्तव में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य अच्छा होगा और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य भी प्रतिकूल होगा। भाग्य केवल पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन वर्तमान के कर्म ही भविष्य का भाग्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कर्मों की गति का क्या रहस्य होता है। कर्मों की गति को समझना बहुत कठिन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी है, जबकि कोई इंसान दुखों का सामना कर रहा है जिसने कि हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन यह कर्मों की जटिल गति का ही प्रभाव होता है। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय आता है तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का दंड भी देर सवेर अवश्य मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। आइए अब समझते हैं कि अच्छे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और अगले जन्म में भी सुखद जीवन प्राप्त होता है। बुरे कर्म जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, ईर्ष्या और द्वेष रखना, लालच करना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक अशांति मिलती है, समाज में तिरस्कार मिलता है और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्मों की गति को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि वे ही हमें सफलता, सुख और शांति प्रदान करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए हमें सत्कर्म की राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमच रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमच रेडियो पुणेरी हो आमच रेडियो पुणेरी।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी इज विद अस, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ मैं। हम बात कर रहे थे उस दिन टॉलरेंस के ऊपर और लेट गो के ऊपर, तो यहाँ ये कहता है कि सिंस अदर्स हैव टू टॉलरेट माई वीकनेस। आज तक तो मैं समझता था कि मेरी वीकनेस नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। Since others have to tolerate my weaknesses, it's only fair that I should tolerate theirs.
2: कितना beautiful नजरिया है ना, क्योंकि हम हर बार ये सोचते हैं कि दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के शब्दों को हम सहन कर रहे हैं। I'm tolerating so much, I'm adjusting so much.
1: दूसरा कितना करता है, जुल्मी है। हाँ? दूसरे जुल्म करते हैं, दुनिया जुल्म करती है।
2: नहीं, दुनिया मींस इवन इफ इट इज जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स।
1: हाँ, दुनिया में आते हैं।
2: हाँ, कि हमें लगता है हम उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हम टॉलरेट कर रहे हैं, हम उनकी बात को सहन कर रहे हैं, हम क्षमा कर रहे हैं, हम बात को लेट गो कर रहे हैं, हम बातों को भूल रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ये सोच सोच के भी बिकम मोर लाइक अ विक्टिम। लेकिन दिस लाइन रिमाइंड्स अस कि जितना हम दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उतना ही दूसरा भी हमारे साथ कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुली सेज कि क्योंकि दूसरा हमारी वीकनेसेस को टॉलरेट कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फेयर कि हमें भी उनकी वीकनेसेस को टॉलरेट करना है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पावर।
1: आपके एक एपिसोड में आपने मुझसे कहा था कि जब मैंने कहा कि एक पर्सन के साथ जो मुझे बिल्कुल ही उसके अपने उसका बिहेवियर, उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि उसको लिख के दे दूं पूरी ये पॉइंट मुझे बिल्कुल आपके जमते नहीं। तो यू नो व्हाट यू सेड, आपने कहा कि उनके पास भी इससे ज्यादा लंबी लिस्ट निकलेगी। वो बोलेंगे आपकी इतनी जो है गलतियां, आपकी चीजों को मैं टॉलरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी अपनी ही वीकनेसेस जो दूसरे टॉलरेट कर रहे हैं, जो दूसरों को दिखती हैं, वो मैं अपनी खुद की नहीं बना सकता।
2: कई बार एक्चुअली वो वीकनेस नहीं होती है। समटाइम्स इट मे नॉट बी अ वीकनेस।
1: मेरा नेचुरल बिहेवियर भी पसंद नहीं आता होगा।
2: नहीं, एक नॉर्मल बात भी दूसरे को सही नहीं लगती है। वीकनेसेस में हम ठीक है पिन पॉइंट कर सकते हैं, इनका गुस्सा, इनका इरिटेटिंग बिहेवियर, इनका क्रिटिसाइज करना,
1: इनका
2: इन चीजों को, हाँ, इनको चलो आदतें ऐसी, ये चीजें पिन पॉइंट करना इजी होता है कि जिसको दूसरे भी पिन पॉइंट कर सकते हैं और दूसरे भी कहेंगे कि हाँ हमें ये सहन करना पड़ता है, इसको हम भी अपने अंदर देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होगा कि वो एक वीकनेस नहीं है, वो एक बात है जो हमने जस्ट कही है। एंड आज भी हम एब्सोल्युटली ये मानते हैं कि जो हमने कहा था वो बिल्कुल सही था। आई कैन से समथिंग टू यू विच विल हर्ट यू, यू विल फील दैट व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग, बट आई विल स्टिल कंटिन्यू टू फील दैट व्हाट आई हैव सेड वॉज इज एंड विल ऑलवेज बी राइट। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता?
1: अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट ही है तो क्या कर लेगा वो?
2: इसमें वीकनेस नहीं है ना कोई भी। मैंने कुछ कहा, सिर्फ एक कुछ कहा, एक बात कही जो आपने कहा कि मुझे बहुत बुरी लगी। आपने ऐसा कहा कैसे, मुझे इतना हर्ट हुआ। आप मुझे बार बार भी ये बात कहते गए, तुमने बोला कैसे ऐसे, इतनी बड़ी बात बोल दी। एंड आई विल कीप वंडरिंग कि क्या बात हर्ट कर गई, किस बात से दर्द हो रहा है। ये बात जो मैंने कही थी तो ये बिल्कुल सही थी। दिस इज व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमारा सही भी दूसरे को गलत लग सकता है। तो वीकनेस
1: तो कई बार हमारा सही भी, वो कहते हैं कि आपने सही तो कहा, सब कुछ ठीक था, फिर तो इतना नाराज क्यों? नहीं, आपने चार आदमियों के सामने बोला।
2: अच्छा, उस टाइम जब आपने उनके सामने भी बोल दिया तब आपको नहीं लगा कि आप जो कह रहे थे वो कुछ गलत था? तो समटाइम्स हमारा राइट भी दूसरे को राइट नहीं लगता, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे राइट्स, हमें जो राइट लगते हैं वो दूसरे को राइट नहीं लगते, लेकिन वो उन सब चीजों को भी टॉलरेट करते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ही टॉलरेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, जो हमारे साथ रह रहे हैं वो भी हमारी बहुत सारी बातों को टॉलरेट करते हैं।
1: छोटी छोटी बातों मुझे ऐसी आ रही है, 20-25 साल पहले मैंने एक इंश्योरेंस एजेंट को बहुत बुरी तरीके से डांट के बाहर भेजा। बात करते करते बोलता, सपोजिंग आप मर गए और आपके मरने के पहले तू गेट आउट, बाहर निकल, तू बस, मैंने बोला कि मतलब तू बाहर निकल, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
2: बिल्कुल राइट था। तो वो लाइफ इंश्योरेंस वाले को तो बोलना ही पड़ेगा ना कि इंश्योरेंस किस लिए करवानी है।
1: हाँ, तो उसने बोला कि आपके बाद बाद भी नहीं, बोला सपोजिंग आप मर जाते हो, बाइक तो निकल जाएगा।
2: तो दिस इज व्हाट विल हैपन, कि कई बार दूसरे का राइट भी हमारे लिए राइट नहीं होता।
1: तो
2: है
1: गेट के बाहर जाके क्या सोचेगा, सुरेश पागल है, मैं तो सच तो बोल रहा था, मैंने तो बोला कि लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद ही तो मिलता है, तो रॉन्ग क्या बोला।
2: तो यही हमें देखना है ना, कि इसलिए कई बार हमें नहीं समझ में आता कि लोग किस बात से हर्ट हैं। हमने जो कहा था वो तो बिल्कुल सही था, हमने जो कहा था वो सही हो सकता है, लेकिन दूसरे के संस्कार के अनुसार, चाहे वो संस्कार अहंकार का है, चाहे वो संस्कार सेंसिटिव होने का है कि कोई बात जल्दी से हर्ट हो जाती है, दूसरे को वो सही नहीं लगता। यही तो आर्ट है एक दूसरे के साथ जीने का। एंड इसीलिए राजयोग जो हमें सिखाता है, या जो शक्ति हमारे अंदर धारण होती है मेडिटेशन रोज करने से, वो है एक दूसरे की बातों को सहन करने की, जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। लेकिन सहन शक्ति को कई बार एक बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, हमें कितना सहन करना पड़ता है, सो इट बिकम्स मोर लाइक अ विक्टिम। तो परमात्मा सिखाते हैं सहन करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना मींस सिर्फ ये याद रखना हमेशा, ये और मैं डिफरेंट है, इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंड इनका संस्कार, इनका रोल इस ड्रामा के अंदर, हर आत्मा का एक रोल है इस विश्व ड्रामा के अंदर। हम ये चाहते हैं कि उनका रोल वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। हर आत्मा, देखो आपके घर जो बच्चा बन के आया, जो एक स्टाफ आया, बहू आई, दामाद आया, वाइफ आई, एक एक जना जो आता है हमारे घर के अंदर, वो एक आत्मा है जो एक बहुत लंबी जर्नी से आई है ना। उस लंबी जर्नी पर अनेक संस्कार और अनेक उसके कार्मिक अकाउंट, इज द रीजन वो आत्मा आज जैसी है वैसी है, ऐसी है। एंड परमात्मा कहते हैं इसके अलावा वो कोई और तरह से हो ही नहीं सकते। वो जैसे हैं उस समय के अनुसार, उनका रोल वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। इट्स लाइक व्हेन यू डू मूवीज, एवरी एक्टर विल हैव अ डिफरेंट
1: स्टाइल,
2: अ रोल स्टाइल भी अलग।
1: आई थॉट स्टाइल इन वे ऑफ डूइंग द सेम रोल,
2: नो, डिफरेंट रोल्स। हर आत्मा का डिफरेंट रोल है, हर आत्मा का अपना स्क्रिप्ट है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। इस बात को सारा दिन याद रखना पड़ेगा। एंड हम चाहें कि सबके संस्कार हमारे जैसे हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज अननेचुरल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, विल ओनली गिव मी पेन। तो टॉलरेंस एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड नहीं है कि हम मुझे कोई सहन करना पड़ रहा है। टॉलरेट करना,
1: टॉलरेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग,
2: यस, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। टॉलरेंस मीन्स समझ, समझ के इनका
1: समझ है, थोड़ी सी विजडम भी है,
2: बिल्कुल है,
1: थोड़ी मेच्योरिटी है,
2: मेच्योरिटी है,
1: अंडरस्टैंडिंग।
2: आज सहन एक बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया है, नहीं तो कि सहन करना पड़ता है जी, कितना सहन करना पड़ता है, वो सहन तो किया ही नहीं। अगर हम नेगेटिव हैं तो हमने सहन तो किया ही नहीं।
1: बड़े बड़े स्ट्रांग शब्द हिंदी फिल्मों में आते थे, मैंने खून का पता नहीं किस चीज का घूंट पी के सह लिया, सिर्फ छाती पे पत्थर रख के सह लिया।
2: वो जो वर्ड है वो एक्चुअली सप्रेशन है, वो सहन नहीं है।
1: मतलब मैंने अपना रिएक्ट इतना जोर का किया लेकिन अपने रिएक्शन को मैंने दबाया,
2: दबा लिया तो वो सप्रेस कर लिया ना, ये सहन नहीं है। मतलब मुझे दर्द है लेकिन मैंने दर्द को अपने अंदर सप्रेस कर लिया।
1: मतलब मुझे रिएक्ट ही नहीं हुआ, मैं इतना समझदार हो गया, इतनी बात अगले को समझ गया और अगले को भी सोल समझा।
2: रिएक्ट होने का अब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा, अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था।
1: एक्सेप्ट किया, टॉलरेट किया, एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, मैच्योरिटी भी आई, विजडम भी है, सब कुछ मिल मिला।
2: इट्स लाइक जब हमें अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग देश के लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग मिलते हैं, एक ही देश में भी, सपोज इंडिया में तो हर स्टेट में जाए तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कितना डिफरेंस होता है कल्चरली, कल्चरली डिफरेंस होता है ना। लेट्स से एक सिंपल चीज लें, खाने की चीजों में कितना डिफरेंस है। सपोज आप पंजाब से आए, आप गए गुजरात, ठीक है, अब गुजरात के लोग मीठा खाना खा रहे हैं एंड आप कहते हैं मसाला तीखा खाना हम खाते हैं, अगर वो कहें हम तो जो दाल बनाते हैं, जो कड़ी बनाते हैं, हम तो उसमें चीनी और गुड़ डालते हैं, तो क्या इसको सहन करना पड़ेगा
1: कि मुझे सहन तो नहीं है,
2: ये क्या है,
1: ये बस अडेप्ट कर लिया, टेस्ट करके देख लिया कि
2: नहीं। तो इसको सहन कहेंगे या अंडरस्टैंडिंग कहेंगे कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से डिफरेंट है?
1: अंडरस्टैंडिंग है।
2: क्या उनकी मीठी दाल खाना गलत है?
1: नहीं।
2: क्या उनकी मीठी दाल खाना ठीक है?
1: एक्वायर्ड है, टेस्ट एक्वायर किया हुआ मैंने।
2: क्या वो राइट है या रॉन्ग है?
1: अब दोनों राइट है।
2: वो राइट है या रॉन्ग?
1: वो राइट है।
2: वो राइट है। क्या हम ये कहेंगे कितने अजीब लोग हैं मीठी दाल खाते हैं? मतलब मीठी दाल भी कोई खा
1: सकता है? बोलते भी हैं लोग अजीब।
2: दैट इज वाई, बिकॉज वाई, क्योंकि इनटॉलरेंस की हम क्या पहुंचते जा रहे हैं, अति पर जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं याद रह रहा कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट टेस्ट, वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जिसका उतना लेवल ऑफ टॉलरेंस भी होगा कहेंगे ठीक है, इनका इस तरह का खाने का टेस्ट है, हमारे खाने का टेस्ट डिफरेंट है। उसको वो सहन नहीं करेंगे, दूसरे को वो गलत नहीं बोलेंगे, दूसरे को वो अजीब नहीं बोलेंगे, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये ऐसे करते हैं। टॉलरेटिंग द डिफरेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर डिफरेंट एंड दे विल ऑलवेज।
1: ये तो थोड़ी सी दाल में शक्कर और नमक का फर्क है, बट जो आदमी नॉन वेज और वेज का होता है वो क्या करेगा, एक ही टेबल पे बैठ के वो एक ही घर में थोड़ी खाएगा, वो तो बोलेगा छी छी भागो इधर से, इधर तो ये तो मटन पक रहा है, पक गया है।
2: सिर्फ नॉनवेज और वेज का फर्क नहीं, ये फर्क है संस्कारों का भी होने वाला है आगे, जिसको हमें टॉलरेट करना है। क्यों नहीं टॉलरेट करेंगे? आपके लिए जो सही है वो आप खाते हैं, मेरे लिए जो सही है उसको हमने खाना है, हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को, नहीं तो हमारी एनर्जी क्या जाएगी एक दूसरे के लिए। इतनी भी अगर पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं होगी हमारे अंदर, तो फिर एक दूसरे के साथ रहना और चलना एंड फिर इसको सिर्फ खाने के लेवल पर नहीं रखना है, पहनने के लेवल पर नहीं रखना है, भाषा के लेवल पर नहीं रखना है, इसी चीज को अब संस्कारों के लेवल पर देखना है। जब दो आत्माएं दो लंबी लंबी एब्सोल्यूटली डिफरेंट जर्नी से आई होंगी, कई बार उनका एक भी संस्कार सेम नहीं होगा एक दूसरे के साथ।
1: सिस्टर आप जो कह रहे थे अभी टॉलरेंस की बात, समझो किसी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है और मैं समझ गया और अंडरस्टैंड किया और अंदर से मुझे बुरा लगा, लेकिन वही बात दूसरा आदमी बोले उसका बुरा नहीं लगता, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन ये बोले तो मुझे बुरा लगता है।
2: अपने आप को बोल दो यही बात फिर से कि यही बात इसने कही मुझे बुरा नहीं लगता, इसने कही मुझे बुरा नहीं लगता, तो इसने कही तो क्यों बुरा लगता है? उसके पीछे रीजन जो सटल होगा वो ये कि वो दो आत्माएं, मतलब वो आत्मा और आप, एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। जब हमारी एनर्जी से एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी नहीं होती ना, तो वो कही हुई बात जो वाइब्रेशन से आती है बात के पीछे की वाइब्रेशन मैटर करती है ना. एक जने ने आपको एक बात कही, सपोज एक जने ने आपको आज आके कहा कि ये जो आपने पहना है ना, ये आप पे ठीक नहीं लग रहा. ठीक है, वो एक लाइन है, ये जो आपने पहना है ये आप पे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा. लेकिन उस बात के पीछे की इंटेंशन, उस बात के पीछे की एनर्जी, उस बात के पीछे की वाइब्रेशंस एक टाइप की है. ठीक है, दूसरे जने ने भी आके यही लाइन कहनी है, ये जो आपने पहना है बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके ऊपर. लेकिन उस बात की इंटेंशन और एनर्जी दूसरे टाइप की हो सकती है. एक टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है आपके अच्छे के लिए, एंड प्लस ओवरऑल, नॉट ओनली ड्यूरिंग दैट वन लाइन, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कि आपका और अच्छा और बेस्ट. और एक टाइप की एनर्जी हो सकती है आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपकी गलतियां ढूंढने के लिए.
1: वही तो फील हो जाता है ना,
2: वही फील हो जाता है ना. लेकिन वो फीलिंग को भी अब हमें क्या करना है, दूसरी आत्मा के संस्कार को इतनी जल्दी नहीं करना ना कि किसी ने हमें कुछ भेजा, हमने वही चीज वापस भेज दी. क्या हमारे पास चॉइस नहीं कि हमने वापस क्या भेजना है? क्योंकि वही फील हो गया और चूज करके दूसरा नहीं भेजा, तो अपने भाग्य में लिख लिया ना कि वही एनर्जी वापस आएगी.
1: अब मुझे उस पे गुस्सा आता है ना, दूसरे वाले पे
2: जिसने गलत तरह से बोला. हाँ? ना हाँ, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया
1: और इसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा. हाँ? एक का,
2: क्योंकि इंटेंशन अलग अलग है ना, एनर्जीज अलग अलग.
1: आप बोल रही है दोनों को टॉलरेट करो, मतलब कैसे करेंगे?
2: जिसकी एनर्जी अच्छी है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है.
1: हाँ, उसको तो दुआएं दी,
2: उसको तो दुआएं देनी है. और जिसकी एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं है, जैसे आप
1: दुआएं दूंगा
2: तो फिर नुकसान किसका हो जाएगा?
1: वो निकलेगी ना बदलाएं, मैं थोड़ी दे रहा हूँ.
2: कॉन्शियसली अब अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा.
1: किसी ने बात बताओ, मैं दीवार पे मुक्का मारूं तो मुझे दर्द होगा कि नहीं?
2: देखो,
1: तो उसने इतना ऐसा बोला तो मेरे अंदर से बददुआ निकली.
2: बोल भी दिया, अब चेंज कर लेते हैं.
1: क्यों करना है?
2: जिसने आपको अच्छी एनर्जी दी वो तो आपको अच्छा ही लगा क्योंकि उसने चीज ही अच्छी दी. किसी ने आपको अच्छी गिफ्ट दी और आपने भी उसको वापस गिफ्ट दी, उसमें तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं है बिल्कुल भी. किसी ने आपको गलत चीज दी, अगर आपने भी वापस गलत चीज दी, तो एक तो वो गलत चीज आपके हाथ से निकली,
1: तो क्या वही डिजर्व्ड इट ना?
2: आपके हाथ से निकली,
1: निकली तो क्या हुआ?
2: तो सबसे पहले हु गॉट इट?
1: आई गॉट इट.
2: उस गलत चीज को मुझे अपने हाथ में पकड़ के देना पड़ेगा ना.
1: हाँ.
2: तो सबसे पहले आई गॉट इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अपनी डेस्टिनी लिख ली.
1: कैसे?
2: कि अब वो फिर से वही गलत चीज ही मुझे देगा.
1: क्यों?
2: क्यों?
1: एक बार उसको मैं डांट दूं, दूसरी बार आएगा थोड़ी ये बात करने के लिए?
2: दूसरी बार आपके बारे में अच्छा सोचेगा क्या?
1: ना सोचे
2: तो फिर गलत चीज मिली रही है ना, मैंने अपना भाग्य लिख
1: तो
2: लिया.
1: कोई मेरे बारे में ना गलत सोचेगा, और खुद ही आगे उसको नहीं मालूम था कि वो किस इंटेंशन के लिए आया था.
2: उस वो अगर किस इंटेंशन के लिए आया था, वो जेलस था. लेट्स टेक जेलसी. चलो, पीपल आर जेलस. कितने दर्द में होंगे अंदर?
1: क्या बट ही डिजर्व्स इट ना सिस्टर?
2: अगर वो दर्द में है, व्हाट डज ही डिजर्व नाउ?
1: हाँ, तो इफ ही इज जेलस ऑफ पीपल, ही इज इन पेन, तो ही डिजर्व्स दैट पेन.
2: डिजर्व्स व्हाट?
1: पेन, मोर पेन.
2: ही डिजर्व्स हीलिंग.
1: I'm not a healer. I'm talking about 3-4 actors in a studio.
2: बिल्कुल.
1: तो मेरा क्या लेना देना अगर एक आदमी घर से जेलस हो गया?
2: अगर कोई ईर्ष्या से है, जेलस है, अंदर वो कितने दर्द में होगा? पहले तो हम उसका दर्द इमेजिन ही नहीं कर सकते.
1: अभी क्या मैं थोड़ी,
2: आप सोचो, एक मिनट सोचो. ईर्ष्या कर रहा है, पहले ईर्ष्या क्यों कर रहा है? ईर्ष्या इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो नहीं मिला जो किसी और को मिला है.
1: ठीक है, वो तो पहले वो शायद वो रोल यही चाहता था.
2: ठीक है, उसको वो रोल नहीं मिला, या उसको उस प्रोफेशन में या जो भी वो सक्सेस नहीं मिली जो दूसरे को मिली. पहले उसका दर्द, उस बात का दर्द कि मुझे वो सफलता नहीं मिली. दूसरा, हर बार सामने उस व्यक्ति को देखना जिसको वो सफलता मिली. तीसरा, शायद अंदर ये फील करना कि ये तो डिजर्व भी नहीं करते थे ये सफलता, ये सफलता तो मैं डिजर्व करती थी. वो दर्द, इतने दर्द में आत्मा अंदर किस स्थिति में होगी? अब इतनी दर्द में, इतनी कमजोर आत्मा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो आकर आपके अच्छे के लिए कुछ प्यार से बोलना है?
1: और क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना मेकअप कर रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ और काम पे जा रहा हूँ, इतने एनालिसिस करते बैठूं कि तू कितनी दर्द
2: वो
1: में?
2: दर्द में है। आपको तो सफलता मिल चुकी है ना, उसको नहीं मिली है। आपको ऑलरेडी सफलता मिल चुकी है, आप ऑलरेडी अंदर खुश हैं, और आपने किसी और के दर्द को वो पावर दे दी कि वो आपको आके डिस्टर्ब करते हैं। जब उसको जब आपको सफलता मिलने के बाद भी आप स्टेबल नहीं रह पा रहे, वो असफलता के साथ स्टेबल कैसे रहेगा?
1: बट ऐसे टाइम पे मैं जब प्रिपेयर हो रहा हूँ, डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ, मेरे दिमाग में इतना बोझ है, अब मैं एनालिसिस करूँ?
2: हमें कुछ एनालिसिस ही नहीं करना है।
1: आपने करवाया ना इतना लंबा
2: तो, अब हम अभी कर रहे
1: हैं। दर्द,
2: उस समय तो हमें कुछ भी नहीं करना। हम कहेंगे अच्छा थैंक यू, आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू, फिनिश्ड। ऐसे थैंक यू सो मच, मैं अभी जाकर देखती हूँ व्हाट आई कैन डू।
1: आई एम नॉट अ कंप्यूटर।
2: You are a beautiful, pure, powerful soul, divine atma.
1: ऐसा होता ना सिस्टर, तो लड़ाई ही नहीं होती दुनिया में। तो
2: वही तो दुनिया क्रिएट कर रही
1: है। सिटी का लगा है, सिटी का लगा है, मर्डर हो जाता है, और आप बोल रहे हो कि कोई सीन कर रहा हूँ, डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, मुझे इतना लाइफ और मेरी डेथ का सवाल है, मेरे करियर का, उसमें आके वो जानबूझ के मुझे छेड़ रहा है।
2: All the more important.
1: He is coming in the way of my career. He's trying to spoil
2: my state of mind is coming in the way of my career.
1: My state of mind.
2: Yes.
1: And who's trying to
2: spoil? अगर मेरी एकाग्रता की शक्ति,
1: यही तो खराब करना चाहता है वो।
2: खराब कर ही नहीं सकता ना कोई और, मेरी स्टेट ऑफ माइंड को कोई और खराब कर ही नहीं सकता ना।
1: क्यों?
2: अगेन वी कम बैक टू स्क्वायर वन।
1: नहीं बट उसने किया ना,
2: उसने तो सिर्फ बोला।
1: क्यों बोला? अगेन यू कम बैक टू इंटेंशन। क्यों बोला?
2: क्यों बोला?
1: उसको मालूम था इसको छेड़ के मैं भाग जाऊं।
2: एंड आपने उसको जिता दिया।
1: हाँ,
2: आपने जिता दिया। अगर आप सचमुच उसको हराना चाहते थे, अगर आप चाहते थे कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करे, आप सचमुच उसको हराना चाहते थे, देन डोंट लेट देम अकम्प्लिश व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इट्स सिंपल ना। अगर तो कोई जान पूछ के ही आया था आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप डिस्टर्ब हो गए, तो उसका मिशन अकम्प्लिश हो गया ना।
1: वो तो खुशी खुशी जाएगा,
2: हो गया ना काम उसका पूरा। अगर उस एंगल से भी सोचो,
1: वो सक्सेसफुल हो गया,
2: वो सक्सेसफुल हो गया, हम हार गए। जब आप कह रहे हो वो सीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वो कॉन्सेंट्रेशन पावर
1: मेरा करियर है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुझे अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब। इन चीजों को छोड़, मेरा काम क्या है, आई शुड डू माई बेस्ट।
2: ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अब
1: इस एक ही चीज को कितने एंगल से देखते हो। आपके एंगल से मैंने आज पहली बार सोचा ये पॉइंट को, कि अगर मैं जो कहा अभी कि मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरा इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का टाइम, द बेस्ट पिक्चर ऑफ माय लाइफ टाइम, बेस्ट सीन, और इफ दीज आर दिस थिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू मी, ये तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था।
2: सोचना ही नहीं चाहिए था,
1: फिर कैसे हो गया, गड़बड़ हो गई।
2: कोई नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो तभी होगा जब हम ये लाइंस को हटाएंगे, वो आया, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मेरी कंसंट्रेशन तोड़ी, उसने मेरा करियर खराब किया,

0: तूने मेरे काम को उस दिन खराब किया, उसने मेरे सीन को खराब किया। सी आर लैंग्वेज।
1: इसको अगर मैं सोचा कि छोड़ो ना इसको, बेचारे को ऐसे है, ये परेशान है, बोलता मेरा लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, और उसको मैं हटा देता थॉट से, तो उसके अंदर क्या, किस चीज की जरूरत थी?
0: अंडरस्टैंडिंग,
1: शक्ति की।
0: पहले अंडरस्टैंडिंग, ये तो अंडरस्टैंडिंग तब अगर वो उसने इंटेंशनली किया है।
1: इंटेंशनली करते हैं लोग,
0: नहीं कई बार अनइंटेंशनली भी हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या है ना। अनइंटेंशनली मीन्स मुझे आपसे जेलसी है, ईर्ष्या है, एंड आउट ऑफ दैट जेलसी आई विल से समथिंग लाइक दैट। नॉट नेसेसरी कि मुझे इनको डिस्टर्ब करने जाना है। अनइंटेंशनली मैं आपके लिए बुरा ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे जेलसी है, तो मैं बुरा ही बोलती हूँ। मैं कुछ न कुछ नुक्स ही निकालती हूँ, मैं कोई ना कोई गलती ही ढूंढती हूँ।
1: सिस्टर जेलसी में भी बेसिक उसका डिजायर और सक्सेस तो उसी में है कि मैं जेलसी, उसको ये बोला उसको हर्ट हुआ, मैं हर्ट नहीं हूँ तो वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा,
0: सक्सेसफुल नहीं होगा ना। तो सोचो जिसके अंदर इतनी दर्द होगी और वो एक्चुअली तरीके ढूंढ रहा है दूसरों को तंग करने के, वो आत्मा कितनी दर्द में है। और हमने परमिशन दे दी इतनी कमजोर आत्मा को भी अपने ऊपर हावी होने की, तो हम कहाँ हैं फिर? इतनी कमजोर आत्मा भी, कोई शक्तिशाली आत्मा आकर हमारे ऊपर हावी हो तो भी ठीक था, तो इतनी कमजोर आत्मा आकर हम पे हावी हो गई। जब कोई गेम भी होती है तो हारना भी है तो किससे हारना है? अपोनेंट तो स्ट्रांग होना चाहिए। इतनी कमजोर आत्मा जो मैनिपुलेट भी कर रही थी, जेलस भी थी, श्रूड भी थी, आई और उसने तंग किया और हम तंग भी हो गए।
1: तो
0: ये तो हमारी फिर साइन क्या है कि वो जितनी कमजोर आत्मा है हम तो उससे भी कमजोर थे, इसीलिए तो वो विन हो गई, हम लूज हो गए। इसीलिए तो वो जीती। इसका मतलब हमारा एक्सरे क्या निकला कि हम तो उससे भी कमजोर थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें सफलता भी मिली हुई है, हम जो चाहते थे वो हमें मिला है। वो तो इसलिए कमजोर है क्योंकि उनको मिला नहीं, हमें तो मिलकर भी हम कमजोर हो गए।
1: फिर
0: हम तो अच्छे, तो कौन ज्यादा पावरफुल है?
1: वो
0: फिर
1: क्या करें?
0: फिर नाउ अगेन रिफ्लेक्ट एंड ये सारी लाइंस को पहले चेंज करना है। उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हमें खुद अपने ऊपर पावर नहीं थी, हमारा खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, हमने खुद अपने मन और बुद्धि पर उस समय संयम खोया। एंड आज अंडरस्टैंडिंग, वो आत्मा दर्द में थी, दर्द में कोई भी ऐसे ही करेगा, एंड मेरा रोल है उस आत्मा को भी शुभ भावना देकर उसके इस दर्द को अंडरस्टैंड करना ही टॉलरेंस है।
1: अंडरस्टैंड हुई बात, एक अच्छी थॉट आई। अगर ये आदमी खूब शराब पिया हुआ होता तो आके ऐसे बोल के जाता तो मैं बोले बेचारा पिया हुआ जाने दो। ये चीज अब इसी को मैं सोचूं कि बेचारा इतने दर्द में है, फेलियर है, ऐसी बात करेगा जाने दो।
0: टॉलरेट, दिस इज टॉलरेंस बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टॉलरेट कर लिया कि हाँ नेचुरली वो तो होश में ही नहीं है तो क्या बोलेगा इस टाइम पे। ऐसे ही जब कोई बीमार होता है और वो इस तरह से बिहेव करता है, हम कहते हैं, हम टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, कहते हैं हाँ बीमार है तो वो ऐसे ही बात करेगा ना। तो फिर ये भी तो बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत दर्द में है। जो इतना सोच के मैनिपुलेट करेगा वो तो बहुत दर्द में है। ये अंडरस्टैंडिंग ही टॉलरेंस है।
1: वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई, अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: समटाइम्स पीपल माइट गेट हर्ट एंड फाइंड आवर बिहेवियर्स wrong, but we feel that what we did was absolutely right. We find their hurt unreasonable because we feel there was nothing wrong in what we had said or done. We always feel that we tolerate and adjust with people. We need to remember that people also tolerate and adjust with our

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
5: क्या आपको पता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2015 को भारतीय सरकार द्वारा विश्व को सबसे बड़ा योग अभ्यास कराया गया? यह कार्यक्रम राजपथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें 35,900 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का, हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए बात करते हैं आज पुराने 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज, जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं और हम सुनाते हैं। तो आइए आज हम लोग जे अक्षर वाले खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे, जैसे कि ये गाना शुरुआत में मुकेश का।

जी हाँ, गाना थोड़ा स्लो है लेकिन इसका जो संगीत है बहुत ही खूबसूरत है। बीच के जो लिरिक्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही साथ जो नौशाद साहब का जो संगीत है वो अपने आप में एक अलग अंदाज है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से है, 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंदाज। जी हाँ, अंदाज एक खूबसूरत फिल्म है जिसमें दिलीप करके एक लड़के का रोल है। दिलीप को अपने सबसे अच्छी दोस्त नीना से प्यार होता है, हालांकि जब उसे पता चलता है कि नीना पहले से ही राजन से प्यार करती है तब उसका दिल टूट जाता है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि मन कोई कपड़ा नहीं है फिर भी मैला हो जाता है, वैसे ही दिल कोई शीशा नहीं है फिर भी टूट जाता है। आइए 1949 का कार्यक्रम की शुरुआत में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, मुकेश साहब का गाया, नौशाद साहब का संगीत, महबूब खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म जिसमें कलाकार थे दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जी हाँ, दिलीप कुमार नरगिस पर पिक्चराइज किया गया खूबसूरत गाना आपने सुना, झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत। तो चलिए, आपके जीवन में इसी तरह खुशी बनी रहे ऐसी शुभकामना करते हैं। और कहते हैं, मंजिल मिलने से दोस्ती बुलाई नहीं जाती, हम सफर मिलने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती, दोस्त की कमी हर पल रहती है यार, दूरियों से दोस्ती छुपाई नहीं जाती। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। 1959 में ही एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था रात की रानी। जब प्यार हो जाता है तो दिन क्या रातों की नींद भी उड़ जाती है, ऐसे ही कुछ भाव भरा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। और उसके पहले ये छोटी सी कविता आपके लिए खास। इतनी बेचैनी से तुमको किसकी तलाश है, वो कौन है जो तेरी आंखों की प्यास है, जब से मिला हूं तुमसे यही सोचता हूं मैं, क्यों मेरे दिल को हो रहा तेरा एहसास है। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ रात की रानी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

झूम झूम डलती रात। जी हाँ, कैफी आजमी का लिखा ये गीत अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ। जिंदगी के इस मोड़ पे तुम आके यूं मिले जैसे कि कोई मंजिल मेरे इतने पास है, एक नजर की आस में ताकता हूँ मैं तुझे, अब देख तेरे खातिर एक आशिक उदास है। तो आइए, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत दा का संगीत, फिल्म कोरा जो 1964 में रिलीज हुई थी। अमित राजेश्वरी पर पिक्चराइज किया गया था। अमित जो है राजेश्वरी से शादी करने और दूसरे घर में जाने के बाद भी अपनी पूर्व पत्नी पूनम को नहीं भूल पाता, तो ये भी एक लव रोमांटिक मिस्ट्री इस फिल्म की है जो इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। वीरेन नागा जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी, ये नया दार दार। वैदा रहमान, विश्वजीत और ललिता पावर पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत फिल्म। आइए, इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हर कदम हर पल साथ है, दूर होकर भी हम आपके पास है। आपका हो न हो पर हमें आपकी कसम। उजाला 1959 में एक फिल्म आई थी और ये भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जिसमें कलाकार के रूप में शम्मी कपूर, माला सिन्हा और राजकुमार थे। कमर जलालाबादी ने इस फिल्म को लिखा था और 1959 में रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत और इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि मुंबई में एक गरीब परिवार की कहानी इसमें बताया गया है। गरीब परिवार में एक गरीब छात्र है और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां पढ़ाई छोड़कर कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है जो अपराध करते हैं और ये भी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। तो इस तरह की कहानी इसमें बताई गई है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना
1: झूमता।

हसरत जयपुरी का लिखा, लता मन्नाड़े का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म उजाला का ये गाना आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। तो आइए, निगाहों पे दस्तक देने को एक सपना आने वाला है। खबर मिली है वो सपना सच होने वाला है। हमने कहा है कि उनकी पलकों पे जाना, क्योंकि हमारा प्यारा सा दोस्त अभी सोने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1959 की बातें चल रही हैं और उस समय एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था धूल का फूल। ये नाम भी बहुत ही पॉपुलर रहा क्योंकि फिल्म बहुत चली। राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा और अशोक कुमार तीन दिग्गज कलाकार इसमें थे। साहिल लुधियानवी के गीत इसमें लिखे गए और यश चोपड़ा का निर्देशन में यह फिल्म बनी। यश चोपड़ा अपने आप में खुद एक बहुत ही अच्छे राइटर है, एक अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने जो भी फिल्म लिखे है कहीं ना कहीं लव केमिस्ट्री को एक अलग रूप देने की कोशिश की है। लेटेस्ट में भी इनकी फिल्में आप देखेंगे तो बहुत ही अलग टाइप का प्रेम कहानी को बताने की कोशिश इन्होंने की है। फिल्म का जो कहानी है, एक लड़का जो अपने पिता के दबाव में अपनी प्रेमिका को छोड़ दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, पर प्रेमिका के गर्भवती होने की बात खुलने पर कहानी बिल्कुल क्लाइमैक्स में आ जाती है। एन दत्ता का म्यूजिक डायरेक्शन में ये फिल्म बनी। वही इस फिल्म का ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जो अक्षर जे से शुरू होता है।

तो चलिए इस गीत को सुनेंगे, साहिल लुधियानवी साहब का लिखा, आशा महेंद्र कपूर का गाया, एन दत्ता के संगीत में धूल का फूल। इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो,

है दोस्त तेरी दोस्ती पर नाच करते हैं, हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं, हमें नहीं पता घर वाले बताते हैं, हम नींद में भी आपसे बात करते हैं, आपकी कमी का हर पल एहसास है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने 1959 का सुना, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैं ले चलता हूँ 1962 में। जी हाँ, एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन पर यह पिक्चर बनी थी। एसएन त्रिपाठी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, शैलेंद्र साहब इस फिल्म के गीत लिखे थे। सम्राट तानसेन 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और भरत भूषण, मुकरी, अनिता गुहा इस फिल्म के कलाकार रहे। तो आइए, इस फिल्म में एक गाना है जो बहुत ही खूबसूरत है, सुर सिंगार चित्रा ने इस फिल्म का निर्माण किया था, त्रिपाठी साहब ने इसे संगीत से सजाया था। तो आइए, इस फिल्म का झूमती चली हवा ये गाना आपके लिए अभी।

जी हाँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश जी का गाया, एसएन त्रिपाठी का संगीत, संगीत सम्राट थानसेन का ये गीत आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

महिला पुलिस स्टेशन पर जाती है और उसकी पत्नी होने का दावा करती है। अब फिल्म में यहाँ पर ये बहुत बड़ा खुलासा होता है, किस तरह से खुलासा होता है फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सस्पेंस फिल्म है और इसमें एक गाना है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फिल्म के शुरुआत में ही ये गाना दिखाया गया है, झुमका गिरा रे। ये गाना बहुत पॉपुलर रहा। राज होसला के निर्देशन में बनी ये फिल्म मदन मोहन का संगीत सुनील दत्त, साधना, प्रेम चोपड़ा और मुकरी पर पिक्चराइज किया गया था। ये खूबसूरत फिल्म राजा मेहंदी अली खान का लिखा, आशा भोसले का गाया, मदन मोहन का संगीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। दोस्ती भी क्या गजब की चीज होती है, मगर ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन इसका, समझ लो कि जन्नत उनके बिल्कुल करीब होती है। ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, झुमका गिरारे मेरा साया, 1966 का इस एल्बम से आपने सुना। अब 68 की ओर जाते हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आशीर्वाद, और ये फिल्म अशोक

कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही पॉपुलर फिल्म आशीर्वाद नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो माता पिता है, दादा दादी है, उनका आशीर्वाद की बात यहाँ पर बताई गई है। और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी। इसमें खास करके अशोक कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी दिया गया और इसकी कहानी गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी और अनिल घोष ने मिलकर लिखा था। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है। ये गीत गुलजार साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, वसंत देसाई का संगीत, फिल्म आशीर्वाद का आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। न जाने क्यों हमें आंसू बहाना नहीं आता, न जाने क्यों हाल दिल बताना नहीं आता, क्यों सब दोस्त बिछड़ गए हमसे, शायद हमें ही साथ निभाना नहीं आता। जी हाँ, आइए बात करते हैं अब मेरे हुजूर इस फिल्म के बारे में जो 1968 में रिलीज हुई थी। मेरे हुजूर फिल्म में जो है अख्तर और सलीम दो दोस्तों की कहानी बताई है। दोनों एक ही लड़के से प्यार करते हैं और जब इस तरह की कहानी में जो क्लाइमेक्स आता है लव केमिस्ट्री इसमें बताई गई है। और अख्तर पहले शादी करता है, फिर उनकी शादी में रुकावटें मुश्किलें आती हैं। विनोद कुमार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के गीत, राजकुमार, जितेंद्र, बाला सिन्हा और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जैसे कि ये

तो आइए असरत जयपुरी साहब का लिखा ये गीत है, मन्नाड़े का गाया हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत, मेरे हुजूर 1968 का ये गाना आपके नाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। होठों पे प्यार के अफसाने नहीं आते, साहिल पे समुंदर के मोती नहीं आते। ले लो अभी जिंदगी में दोस्तों का मजा, फिर लौट के हम जैसे दीवाने नहीं आते। तो आइए, जीवन मृत्यु एक फिल्म आई थी 1969 में। फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक हीरो जो बैंक मैनेजर है, उसकी शादी होती है और शादी के दिन ही उसे गिरफ्तार किया जाता है और रिहाई के बाद वो इस गिरफ्तारी का जो है बदला अपने जो साथी जिन्होंने उसे फंसाया था उनसे लेता है। तो इस तरह की ये कहानी जो है बदला लेने की बात इसमें बताई गई है। सत्यसेन बोस के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, धर्मेंद्र राखी गुलजार, राजेंद्र नाथ, रमेश देवल ने इस फिल्म में काम किया है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है ये।
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा।
0: जी हाँ, आनंद बख्शी साहब का लिखा, लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना। आशा करता हूँ आपने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा हो तो जरूर मैसेज करके अपना प्यार जताइएगा। जाते जाते चंद लाइनें आपके लिए। तुम बन के दोस्त ऐसे आए जिंदगी में कि हम ये जमाना ही भूल गए। तुम्हें याद आए न आए हमारी कभी, पर हम तो तुम्हें भुलाना ही भूल गए हैं। तो इसी के साथ चलिए मुझे दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्ते, आभार, शुभ रात्रि, आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना, क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आज जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत ही सुंदर करियर के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में। साथियों, मैं कहानी सुनाता हूँ एक आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही। एक बहुत ही अच्छा एडिटर रहे हैं हमारे राजस्थान में, जिनका नाम है राहुल। अब ये बंदा जो है एक छोटे से कस्बे में रहता था, उसके पास ना महंगा कैमरा था ना फिल्म का कोई साधन या फिल्म वालों से कोई संपर्क। बस उसके पास था तो एक पुराना उसका लैपटॉप और सीखने की एक तीव्र इच्छा थी। साथ ही दोनों चीजें जरूरी है एक वीडियोग्राफर के लिए। राहुल ने YouTube से वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। शुरुआत में वह शादी के वीडियो और स्थानीय कार्यक्रमों के वीडियो एडिट करके लोगों को देता था। लोग बहुत कम पैसे देते थे, कई बार काम की कद्र भी नहीं होती थी, लेकिन राहुल सीखने के ललक से, इच्छा की वजह से वो करते रहता था और वो कभी हार नहीं माना कि मुझे इसकी कीमत मिलनी चाहिए। जो जितना देता, कम देता, ज्यादा देता, वो रख लेता। अब इससे क्या हो गया, उसका अनुभव बढ़ा और उसकी प्रैक्टिस, पकड़ अच्छी हो गई वीडियो एडिटिंग के फील्ड में। और एक दिन उसने एक छोटी सी सामाजिक डॉक्यूमेंट्री बनाई, गांव की बदलती सुबह। अब ये टाइटल काफी लोगों को पसंद आया। उसने साधारण फुटेज में भावनात्मक संगीत और सटीक कट्स के जरिए ऐसी कहानी रची कि वीडियो वायरल हो गया। बस साथियों, फिर क्या था, आज राहुल एक नामी OTT प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो एडिटर बन गया है और वो गर्व से कहता है, मेरे पास कैमरा नहीं था लेकिन मेरी दृष्टि, विजन क्लियर थी। साथियों, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको अपनी दृष्टि, विजन क्लियर चाहिए। कैमरा हो ना हो, सेकेंडरी बात होती है। तो आइए आज हम लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बातें करेंगे, इस करियर के बारे में। आज का युग विजुअल मीडिया कहते हैं, दृश्य माध्यम का युग है। आप देखिए आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, सारा दिन आप इसे यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, YouTube है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, विज्ञापन है, न्यूज चैनल्स है, हर जगह आप देखिए जहां भी वीडियो का ही बोलबाला है। लेकिन कैमरे के सामने दिखने वाली चमक दमक के पीछे जो व्यक्ति कहानी को आकार देता है, भावनाओं को गहराई देता है और साधारण फुटेज को प्रभावशाली कहानी में बदलता है, वो है वीडियो संपादक, वीडियो एडिटर। साथियों, वीडियो एडिटर बनना आसान भी नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। आप इसे जितना समझ के करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए, वीडियो संपादन केवल कट पेस्ट का काम नहीं है बल्कि ये कला है, तकनीक है और संवेदनशीलता का एक सुंदर संगम है। जितनी गहराई से दृश्यों को आप क्रिएट करेंगे उतना वो टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन काम अच्छा बन के सामने आता है। तो साथियों, ये एडिटिंग बहुत छोटा सा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर देता है। किसी भी स्टोरी को लोगों को आसानी से समझाने में वीडियो एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज आप सुनाए हैं रेडियो 101.07.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं वीडियो एडिटर के बारे में। साथियों, वीडियो संपादक कौन होता है, वीडियो एडिटर कौन होता है? एक ऐसे प्रोफेशनल को वीडियो एडिटर कहते हैं जो रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को चुनकर क्रमबद्ध तरीके से उसको रखता है और फिर अनावश्यक हिस्से को हटाकर साउंड, म्यूजिक, एफेक्ट्स, ट्रांजेक्शन और रंग कलर गार्डनिंग के माध्यम से एक प्रभावशाली वीडियो तैयार करता है। सरल शब्दों में बताएं तो वीडियो एडिटर कहानी का अदृश्य निर्देशक भी होता है, है ना साथियों? आप देखिए, वीडियो एडिटर का शायद नाम आपको पता पड़े या ना पड़े, आप पूरे फिल्म में आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनके नाम जरूर देखते हैं, लेकिन इन सभी को प्रत्यक्ष करने का काम एक वीडियो एडिटर बखूबी करता है, है ना कमाल की बात? तो वीडियो संपादन क्यों है एक बेहतरीन करियर, इस पर आप अगर सोच रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के समय में डिजिटल युग की बढ़ती मांग है। आप देखेंगे हर ब्रांड, संस्थान, व्यक्ति अपनी पहचान वीडियो के माध्यम से बना रहा है। ऐसे में कुशल वीडियो एडिटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है क्रिएटिव स्वतंत्रता, यानी ये करियर उन लोगों के लिए बहुत आदर्श है जिन्हें कहानी कहना, संगीत साजना साझा करना और विजुअल से खेलना पसंद है। तीसरा, फ्रीलांसर और जॉब दोनों के अवसर यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप किसी चैनल, प्रोडक्शन हाउस, न्यूज चैनल, एजेंसी में नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप घर से फ्रीलांसर के रूप में प्रोजेक्ट भी लेके काम कर सकते हैं। चौथी बात आती है अच्छी कमाई की संभावना। अनुभव और स्किल बढ़ने के साथ कमाई भी कई गुना बढ़ जाती है साथियों। अब बात करते हैं वीडियो संपादन बनने के लिए, वीडियो एडिटर बनने के लिए कौन से स्किल की जरूरत है। एक तो पहला तकनीकी स्किल होना चाहिए आपको, एडोब प्रीमियर प्रो, ये सॉफ्टवेयर, फाइनल कट प्रो, डा विंसी रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स, अविड मीडिया कंपोजर, ये सारे वीडियो एडिटिंग टूल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अच्छा जो है वीडियो एडिटर का काम करने के लिए सक्षम है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको वीडियो एडिट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा है रचनात्मक सोच, स्टोरी टेलिंग की समझ होनी चाहिए, टाइमिंग और रिदम का ज्ञान होना चाहिए, भावनाओं को दृश्य में ढालने की क्षमता होना चाहिए। कई बार हम किसी भावना को दृश्य में लाते हैं लेकिन उसे समापन करना भी, फेड आउट करना भी आना चाहिए, वो भी कहाँ और कैसे करना चाहिए एक सोच के आधार पर आप कर सकते हैं। आप जब रचनात्मक सोच रखते हैं तो आप त्रिवेणी रूप से सोचते हैं, एक आप अपना कंप्यूटर में वो किस तरह से दिख रहा है, दूसरा पिक्चर में कैसे दिखेगा और तीसरा लोग इससे क्या समझेंगे। तो इस त्रिकोणीय भावनाओं को अगर समझ लेते हैं तो चीजें अच्छी बन जाती हैं। तीसरी बात आती है यहाँ पर साउंड और म्यूजिक की समझ, बैकग्राउंड म्यूजिक का सही उपयोग करें, डायलॉग क्लियरिटी हो, साउंड इफेक्ट की टाइमिंग प्रॉपर मैच किया जाए, धैर्य और एकाग्रता। आखिरी में आता है साथियों, यहाँ पर एक वीडियो एडिटर को हमेशा धैर्य रखना जरूरी है। वीडियो एडिटिंग एक धैर्य का काम है, कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर सूक्ष्म बदलाव करने पड़ते हैं और कभी कभी बहुत टाइम जरूर लगता है, लेकिन चीज अच्छी बन के निकल के आती है। इसीलिए धैर्य और एकाग्रता का होना वीडियो एडिटर में बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आप सुन रहे हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। साथियों, हमने काफी अच्छी बातें समझ ली है। इसमें जो कौशल की जरूरत होती है, जो टेक्निक की जरूरत होती है, वो आप एक बार समझ ले, फिर से एक बार नोट डाउन करें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जहाँ पर आप तकनीकी कौशल

ना प्रीमियम प्रो, फाइनल कट प्रो, ना विंची, ना आफ्टर इफेक्ट, एविड मीडिया कंपोजर, ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसको अच्छी तरह से आपको सीखना है। दूसरी बात, रचनात्मक सोच हो, स्टोरी टेलिंग, रिदम, टाइम, भावनाएं समय पर कैसे आ जाए ये चीजें देखनी है। साउंड और म्यूजिक की समझ, धैर्य और एकाग्रता, ये चीजें आपके जीवन में एज ए एडिटर इनबिल्ड होना चाहिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण और परीक्षण के बारे में। वीडियो संपादन बनने के लिए, संपादक बनने के लिए किसी एक डिग्री की बाध्यता नहीं है। आप किसी भी एक स्ट्रीम के माध्यम से इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन, इसमें आप मास्टरी करो तो आपका वीडियो एडिटिंग इसमें आ जाता है। फिल्म मेकिंग में भी, मीडिया स्टडीज में भी आता है, या फिर ऑनलाइन कोर्स, ये भी एक कला सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी है प्रैक्टिस और पोर्टफोलियो बनाना। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करके पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। करियर की बात करें तो हम लोग इसमें ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाता है, कोर्सेस कर लेते हैं, किसी भी एक स्ट्रीम में आप मास्टरी हासिल करो, क्या होगा कि जब आप YouTube पे या फिर किसी भी जगह पे, किसी भी स्ट्रीम में, ऑनलाइन पोर्टल में वीडियो डालना चाहते हैं तो वहां पर चांस ये होता है कि आपको जल्दी कमाई भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपका वीडियो एडिटिंग जो कला है वो उसमें मास्टरी आपकी होनी चाहिए। इसलिए जब पढ़ाई के दौरान आप हर चीज को बारीकी से सीखें। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो वीडियो एडिटिंग को ध्यान से सुने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, टीचर से पूछते रहे, अवसर बना बना के आप उनको प्रैक्टिस करते रहे उनके साथ में। और अगर आपको ऑडियो एडिटिंग की जरूरत है तो आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं, या आपको न्यूज एंकरिंग की बात अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। साथियों, यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि आप एक वीडियो एडिटर बन जाते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल और डिजिटल क्रिएटिव वर्क्स के लिए काम कर सकते हैं, न्यूज चैनलों में काम कर सकते हैं, विज्ञापन एजेंसियों में काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वीडियो और डॉक्यूमेंट्री बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं, रेडियो और आध्यात्मिक संस्थानों के वीडियो प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना। तो ये सारी चीजें करियर अपॉर्चुनिटीज में आती है। साथ में जब आप इन चीजों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट ना, आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप कितने आगे पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास एडिटिंग का काम आता है तो छोटे से लेकर बड़ा तक का अवसर आपके पास होता है। कोई आपको शॉर्ट फिल्म लेके आया है और वो बोलेंगे इसको एडिट करो, कोई आपके पास सीरियल लेके आया है उसको एडिट करने के लिए कहेंगे, कोई आपके पास बड़ी फिल्म भी लेके आए होंगे, लेकिन एडिट करने के बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी फिल्म है। इस तरह आप जो है अपना कार्य करते हुए अपने आप को साबित कर सकते हैं और एक अच्छा करियर विकल्प आपके पास बना रहता है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं साइड बाय साइड, जैसे स्क्रिप्ट लिखना और स्टोरी एक्यूरेट, स्टोरी में थोड़ा सा एडिशनल करेक्शन करके भी उसको अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक एडिटर के पास बाद में जब शूट करके क्लिप्स या शॉर्ट्स उनके पास आते हैं तो ऑप्शन उनके पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। चलिए साथियों, मैं आप सभी को कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर हम लोग अर्निंग के बारे में, चुनौतियों के बारे में और अनुभव के बारे में बातें करते हैं। तो साथियों, यहां पर मैं एक और प्रेरणादायी कहानी से जोड़ना चाहूंगा आपको। नेहा नाम की एक लड़की मध्यम परिवार से आती थी। अपने माता पिता चाहते थे कि वो कोई सुरक्षित नौकरी कर ले, लेकिन नेहा को बचपन से ही फिल्में देखने का और उन्हें समझने का शौक था। तो कॉलेज के दिनों में उसने एक छोटा सा कैमरा खरीदा और कॉलेज इवेंट्स के वीडियो एडिट करके पोस्ट करने लगी। कई बार उसे ये सुनना पड़ा कि ये सब क्या टाइम पास है आपका। नेहा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन कोर्स किया, रात रात भर एडिटिंग सीख ली। एक दिन उसका बनाया हुआ शॉर्ट फिल्म एडिट एक फिल्म फेस्टिवल में चुन लिया गया। आज नेहा एक जानी मानी विज्ञापन एजेंसी में सीनियर वीडियो एडिटर है और अपनी माँ से कहती है, हर कट में आपका विश्वास जुड़ा है माँ। साथियों, इस करियर में चुनौतियां ये है कि लंबे समय तक काम करना पड़ता है, क्लाइंट की बार बार बदलती डिमांड होती है, समय सीमा का दबाव होता है, आंखों और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी इसी काम को जुनून से करता है, दिल से करता है, उसके लिए ये चुनौतियां सीखने के अवसर बन जाती है। अब जाते जाते मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई कितनी कमाई हो सकती है। साथियों, इस करियर में भी 15,000 से शुरू होकर 30,000 हर महीने मिल सकते हैं और अनुभव होने के बाद आपके पास आता है विकल्प 50 से 1.5 लाख तक का प्रति महीना आपका पैकेज बनता है। और फिर OTT प्रोजेक्ट है या फिल्म है, फ्रीलांसिंग है, इसमें आपको जो है जैसा वहां का डिमांड होगा वैसे वो चाहिए, उतने पैसे आपको मिल जाते हैं। साथियों, 1.5 लाख आपको अनुभव के बाद प्राप्त होता है। अगर आप फ्रीलांसर बन के करते हैं तो आप जितना करेंगे उतना कमाएंगे, 2-3-4 लाख, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कला और लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता कितनी है। साथियों, निष्कर्ष यही है कि वीडियो संपादन का करियर सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक रचनात्मक यात्रा है। ये उन लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। आज जब हर कहानी वीडियो बनाना चाहती है, तब एक कुशल वीडियो एडिटर की जरूरत पहले से ही कहीं ज्यादा है। अगर आपके पास धैर्य, कल्पना और सीखने की लगन है तो वीडियो एडिटिंग आपके लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सकती है। साथियों, तो चलिए, आशा करूंगा आज वीडियो एडिटिंग के बारे में हमने काफी कुछ सुना जाना और ये एक रचनात्मक यात्रा है आपकी। आप इस पर खो जाइए, डूब जाइए और लोगों को एक अच्छी चीज निकाल के दीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आकाश पर दमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिसे ये दिल, ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। कोई तो बताओ, कोई समझाओ दिल इसको।

फकीरे वाह फकीरे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साला में तो साहब बन गया। Attention! साला में तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन

या गंगू तेरे, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदले

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

कदम गले तब कथा संग नन जी नन धूम मचाया तेरे कदम गले।

जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए।

हे समल सुर पकड़ के धीरे से जाना खटियन में।

ये सब शायद शायर की खाम ख्याली हो, पता नहीं कैसी कैसी परछाइयों को गिरह लगा के बांध देना चाहता है। सब जमा करता है और कुछ हाथ नहीं आता। ये सब के सब सरकते हुए साए हैं, इनमें दर्द भी है रस भी। अजीब चीज है ये शायर, चाहे जितना उंडेलता रहे खाली नहीं होता।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। जिस दिन देखूं जिनके सपने, हो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी, कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।

0: पर धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं बनाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन